सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकई को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकई बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकई ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक का। दूसरा वर भी हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है, मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

कई प्रकार से समझाया, अनु ने विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दें, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
11: स्टूडियो 5, एन इस्लामिक रेकॉर्ड लेबल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।

0: जान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चाकूबाजी कांड के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागज के नोट का बंडल बनाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। विभाग के सचिव ने सिधवलिया मिल का किया निरीक्षण। 2 दिन से लापता एक युवक का खेत में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कटिया में लगा सहयोग शिविर, सुनी गई जनता की समस्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा में पूर्व के आपसी विवाद को लेकर गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने और चाकू से हमला करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में थावे पुलिस ने अब त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से जांच पड़ताल करने के बाद घायल व्यक्तियों को जहां उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि घायलों में एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसको स्थानीय डॉक्टरों ने इलाज के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने थावे थाने पर प्राथमिकी भी दर्ज की है, और इस कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नामजद अभियुक्त मोहम्मद कुदुस शाह उर्फ अब्दुल कुदुस, पिता स्वर्गीय सलीम शाह साकिन एकडेरवा थाना थावे को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर आए दिन लोगों को जाली नोटों के बंडल थमाकर ठगों द्वारा ठगी की घटना सामने आ रही थी। इसमें पुलिस विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मदपुर क्षेत्र से ही एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है, जिसमें कई नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। उस कांड का अनुसंधान अभी चल ही रहा है, उसमें बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तब तक एक और मामला सामने आया, इसमें भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में NH-27 पर चंदन पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग डुमरिया पुल की ओर से मोहम्मदपुर की तरफ आते दिखे। पुलिस की जाँच को देखकर वे मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पीछा करके बल प्रयोग करते हुए पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों की पहचान पवन कुमार साहनी पिता वकील साहनी और उमेश शाह पिता शिवमंगल शाह तथा नंदन साहनी उर्फ बाबूजी उर्फ बुढ़ा पिता स्वर्गीय गणेश साहनी, ये सभी साकिन चांद परसा थाना केसरिया जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल फोन तथा 1 कागज के ऐसे बंडल मिले हैं जिनके ऊपर और नीचे 500-500 रुपए के असली नोट लगे हुए थे और बीच में कागज भरा हुआ था। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे बैंक से पैसे निकाल कर आने वाले लोगों को अधिक रुपए का लालच देकर उक्त बंडल थमाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इस मामले में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया है और मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान की गई है। मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। आज गन्ना उद्योग सह सहकारिता विभाग बिहार सरकार के मंत्री गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिद्धवलिया चीनी मिल का निरीक्षण किया और चीनी मिल के विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही कृषकों के साथ भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, चीनी मिल द्वारा ईख मूल्य भुगतान, गन्ना सर्वे, उर्वरक की उपलब्धता, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, यांत्रिकीकरण योजना, जल निकास एवं गन्ना विभाग तथा अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव ने ससमय सर्वे का कार्य पूर्ण करने, ईख मूल्य भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया। गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा क्षेत्र विस्तार करने पर भी बल दिया गया एवं गन्ना प्रसार यंत्र एवं प्रशिक्षण के द्वारा गन्ना को अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। किसानों के द्वारा बताया गया कि घोड़पड़ास के द्वारा फसल को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे गन्ने का रकबा घट रहा है। घोड़पड़ास के नियंत्रण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिन जिलों में चीनी मिल नहीं है, उन जिलों में भी चीनी मिल स्थापित करने की बात कही गई। जल जमाव के कारण भी फसल क्षति होती है, जिससे उत्पादन घटता है, अतः जल निकास पर भी बल दिया गया। उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अच्छी फसल लगाने का भी निर्देश दिया गया। सरकार चीनी मिल एवं किसानों को मिलकर कार्य करने की बात कही। सचिव महोदय ने कहा कि किसानों को हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि भी हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा बैठक में चीनी मिल के पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय पदाधिकारियों से भी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भारत सुगर मिल सिद्धवलिया के पदाधिकारियों के साथ ही ईख पदाधिकारी गोपालगंज, सिवान एवं अन्य सहायक ईख विकास पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो बलुआ टोला के 40 वर्षीय मोहन यादव रविवार की शाम को घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजन परेशान थे। सोमवार को भी इनकी तलाश की गई। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसी बीच बताया जा रहा है कि इनका शव पुलिस ने खेत से बरामद किया है। परिजनों का आरोप है कि बाजार से मोटरसाइकिल पे बैठा कर कुछ बदमाश इनको ले गए थे और पूर्व के विवाद में इनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल परिजनों को हत्या की आशंका है और इसी मामले में पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि बिसम्भरपुर थाना क्षेत्र के गुमनिया दियारा विजयपुर चंवर से पुलिस ने मृतक मोहन यादव के शव को बरामद किया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद आज इनके परिजनों को सौंपा गया। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों एवं कृषक समुदाय के बीच समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाकर मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं कृषि की सतत उत्पादकता को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संदेश में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने दीर्घकालीन मृदा उत्पादकता एवं पर्यावरण स्थिरता बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के समुचित संरक्षण हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने का आह्वान किया तथा बताया कि संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाने से समय के साथ मृदा के इन गुणों में सुधार देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा के सभी गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में कटिया प्रखंड में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कटिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी गोपालगंज, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही कटिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं को सुनने के बाद सरल एवं सुगम माध्यम से समस्याओं के निदान करने की दिशा में पहल भी किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य प्राप्त आवेदनों एवं जन शिकायतों का त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करना है। शिविर के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान हो रहा है। साथ ही प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निष्पादन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। 9 तारीख को छपरा में भीष्म एक योद्धा ना भूतो ना भविष्यति का मंचन गोपालगंज के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। छपरा के मशहूर भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में शाम को 6 बजे से गोपालगंज के बेहतरीन कलाकार इस नाट्य प्रस्तुति को करने के लिए ललायित होकर तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि बसंत उत्सव पर इस नाटक का गोपालगंज के अंबेडकर भवन में भव्य प्रस्तुति हुआ था। इस दौरान काफी लोगों ने इस डिजिटल नाटक की प्रशंसा की और जिला प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन से अधिक सम्मान से नाटक के कलाकारों को सम्मानित किया गया था। अब इस नाटक का दूसरी बार छपरा की धरती पर मंचन होने जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जदयू पार्टी ने कैंप कार्यालय में कटिया प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्य एवं सिधवलिया प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर द्वारा अपने अपने प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में 9 मनोनीत पंचायत अध्यक्षों की सूची तथा 9 गठित कटिया एवं सिधवलिया प्रखंड कमेटी की सूची जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल को औपचारिक रूप से सुपुर्द किया। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, पंचायत स्तर तक पार्टी के विस्तार तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने 9 मनोनीत पंचायत अध्यक्षों एवं प्रखंड कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गोपालगंज में विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को एक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षित एवं वैध प्रवासन, विदेश में कार्यस्थल की परिस्थितियां, श्रमिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, वित्तीय साक्षरता, सांस्कृतिक अनुकूलन, भारतीय दूतावासों द्वारा उपलब्ध सहायता तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए BSDC गोपालगंज सदर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिरीपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 630 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया। एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मिसिर बतरहा के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी दौरान ट्रक से 630 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस दौरान अनिल कुमार पिता स्वर्गीय चंद्रमा पांडे साकिन बलहा थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया तथा शराब लदे हुए ट्रक को जब्त कर इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी 18 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कोइनी ओवर ब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल सहित शराब को पकड़ लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उसके अंदर से 18 लीटर से अधिक शराब मिली। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर वाहन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दिया है। कटिया थाना की पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल कुशवाहा पिता योगिंदर कुशवाहा साकिन मोहनपुर थाना कटिया जिला गोपालगंज को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही इस मामले में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चाकूबाजी कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागज के नोट का बंडल बनाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। विभाग के सचिव ने सिधवलिया मिल का किया निरीक्षण। 2 दिन से लापता एक युवक का खेत में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कटिया में लगा सहयोग शिविर, सुनी गई जनता की समस्या।
7: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
10: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
17: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
18: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
19: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
20: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
21: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
22: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 097 06 575।

श्रोताओं नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूं आप सभी की होस्ट एंड दोस्त आरजे आलिया। और इस पे कार्यक्रम शुरू हो चुका है आप सभी के बीच सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह। और आज के हमारे कार्यक्रम में होंगे गोपालगंज जिले के वरीय अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पांडे एवं हमारे प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो आइए सुनते हैं आज के इस भेंट वार्ता को।

0: आज रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में जिले के वरीय अधिवक्ता श्री मुकेश पांडे जी आए हैं। रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम जो पहले बंद था, किसी कारण से उस कार्यक्रम को पुनः चालू किया गया है। कानूनी सलाह जो है रेडियो रिमझिम का काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है। श्री मुकेश पांडे जी जो 2001 से सिविल कोर्ट गोपालगंज में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, अपने प्रैक्टिस को कर रहे हैं और श्री वशिष्ठ पांडे जी के सुपुत्र हैं और इनका गांव जो है धराहरा मेला है और थाना कटिया और जिला गोपालगंज है। वैसे श्री मुकेश पांडे जी मुख्तारखाना में बैठते हैं जो ठीक उपभोक्ता फोरम के सामने है, व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के पास। तो कानूनी सलाह हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए हैं कि इस कार्यक्रम को बंद किया गया है, चालू किया जाए। इसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो श्री मुकेश पांडे जी का हम स्वागत करते हैं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद
0: श्री मुकेश पांडे जी। अन्य बिंदुओं पर और चर्चा होगी। सबसे बड़ी समस्या गोपालगंज जिले में भूमि विवाद संबंधी होती है। कहा जाता है भूमि विवाद जो है कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर, कहीं जिला मुख्यालय में या शहर के विभिन्न जगह पर कोई जमीन जो है रजिस्ट्री कराया है उसके संबंध में, तो कहीं जो है भूदान संबंधी जमीन के संबंध में। तो हम सबसे पहले अपने श्रोताओं के तरफ से यह जानना चाहेंगे कि भूदान की जमीन किस तरह किसी को प्राप्त होता है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: भूदान की जो जमीन है वह वैसे लोगों को दिया जाना है, ऐसे लोगों के बीच वितरित किए जाने का प्रावधान है जो भूमिहीन हो, जिनके पास अपनी कोई जमीन न हो। तो इसमें भूदान जो यज्ञ कमेटी है उसके द्वारा चिन्हित किया जाता है कि कौन कौन लोग इसके पात्र हैं और उनको जो है भूदान से जमीन आवंटित किया जाता है। उनको बकायदे उनको पर्चा उनके नाम से काटा जाता है। बहुत जगह व्यवहारिकता में देखा गया है कि बहुत लोग जो भूमिहीन हैं उनके द्वारा भूदान वाली जमीन पर बिना किसी पर्चे का ही अपना मकान बथान या बना लिए हैं, उस पर ऋण लिए हुए हैं, लेकिन उनको बकायदा कानूनी रूप से किसी तरह का कोई विलेख उनके पास नहीं है। तो वैसे लोगों को उस संदर्भ में अपना स्वामित्व लेने के लिए अपने संबंधित स्थानीय ब्लॉक के सीओ के माध्यम से एक आवेदन देना होगा या गोपालगंज जिले में जो भूदान यज्ञ कमेटी का जो कार्यालय है उसमें सचिव को एक लिखित आवेदन देंगे। उस आवेदन के आधार पर सचिव के द्वारा स्थानीय अंचल प्राधिकारी से उस पर रिपोर्ट मांगा जाएगा और सारी प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर यह सामने बात आती है कि जो आवेदक है ऐसी पात्रता रखते हैं कि उन्हें जमीन आवंटित की जाए तो उन्हें जमीन आवंटित किया जाए।
0: भूदान के संबंध में श्री मुकेश पांडे जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि किसी के दखल कब्जा में है तो उसको जो है स्वामित्व के लिए अधिकार के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरनी चाहिए। यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति भूदान का बिना पर्चा कटाए अपना घर द्वार बथान बना लिया है तो आगे भविष्य में उसे किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा?
1: जी जी, बड़ा सुंदर सवाल है आपका। निश्चित रूप से उन्हें कई एक परेशानियां फेस करनी होगी, क्योंकि अगर वह इस तरह का मकान बना लिए हैं और वो उनके पास काफ़ी संपत्ति है, काफ़ी जमीन है, तो वह किसी तरह से इंटाइटल नहीं है कि भूदान के जमीन को दिए जाने के पात्रता के अंदर वो है नहीं है। भूदान यज्ञ कमेटी या भूदान कमेटी के द्वारा जमीन उन्हीं लोगों को वितरित करने का प्रावधान है जो भूमिहीन हो, जिनके पास अपनी भूमि न हो, वैसे लोग अगर जबरन उस पर किए हैं तो सरकार के स्तर से या भूदान कमेटी के स्तर से जब चाहेगा उनको उस अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
0: दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं भूदान का जो है दाखिल खारिज होता है कि नहीं, इसे बताया जाए।
1: भूदान जब कमेटी के द्वारा जो जमीन जो आवंटित किया जाता है, जब वह पर्चा मिल जाता है तो उसके आधार पर जब ब्लॉक में हम जब आवेदन करेंगे, दाखिल खारिज उसका होगा, उसका जमाबंदी क्रिएट होगा, उसमें भी तब जा करके हमको अपना उसका रसीद वगैरह कटेगा।
0: अच्छा, उसके बाद राजस्व कर्मचारी रसीद काटेंगे, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद।
1: जी जी।
0: अब जो है श्री मुकेश पांडे जी, वरीय अधिवक्ता, गोपालगंज सिविल कोर्ट के जो उपभोक्ता फोरम के ठीक सामने बैठते हैं और जिले के वरीय अधिवक्ता हैं, जिसको मुख्तार खाना भी कहा जाता है, जहां पर बैठते हैं, हम यह जानना चाहेंगे,
1: पतवा के उल्लेख पर
0: अच्छा आगे हम यह जानना चाहेंगे कि भूमि विवाद का जो मामला है काफी लंबा प्रक्रिया चलता है। यदि कहीं विवाद हो जाता है, कुछ जमीन पर 144 धारा भी लागू हो जाता है, कुछ जमीन पर सरकार जो है दोनों पार्टी में से किसी को जाने नहीं देती है, यह डिस्प्यूट कैसे होता है?
1: अक्सर इस तरह की घटनाएं बहुतेरे हम लोगों के सामने आती है और गांव देहात समाज में इस तरह की काफी घटनाएं हो रही है। 144 के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर जब कोई भंग करने पर आमादा हो, आपकी अपनी जमीन हो और उसको रॉन्गफुल कोई पोजेशन में ले ले, किसी तरह का कोई निर्माण कार्य उस भूमि पर आरंभ कर दे, तो उसको रोकने के लिए और किसी तरह की प्रशांति दोनों पक्षों के बीच में भंग न हो, इसको लेकर के 144 की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। 144 की प्रक्रिया जो है प्रशासनिक स्तर पर SDO के द्वारा संबंधित थाने के आवेदन पर स्वयं संज्ञान लेके भी किया जा सकता है, या अगर कोई पक्षकार जाता है जब न्यायालय में तो उसके आवेदन के आधार पर 144 की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसमें 144 की प्रक्रिया में यही होती है कि दोनों पक्षकारों को यथावत स्थिति उस जमीन पर बनाए रखना है, स्टेटस को मेंटेन करना है, यानी पूर्व की जो स्थिति है वह रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ या कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन का कार्य किसी तरह का नहीं करना है जब तक कि कोई फैसला न्यायालय से न हो जाए।
0: कुछ जो है देखा जाता है कि जो ग्रामीण है, विशेष करके अशिक्षित व्यक्ति हैं जिन्हें शिक्षा के बारे में कम जानकारी है, बुलाकर रजिस्ट्री ऑफिस में लाया जाता है और बताया जाता है कि आप चौरा का जमीन रजिस्ट्री करने आए हैं, और उन्हें जो है घड़ारी का जमीन रजिस्ट्री करा लिया जाता है, उस स्थिति में पीड़ित द्वारा क्या करना चाहिए?
1: जी जी, बहुत सुंदर सवाल है आपका। इस तरह के बहुत मामले आ रहा है और कुछ सक्रिय भू माफिया का गिरोह भी जिला में संगठित रूप से कार्य कर रहा है, जो ऐसे लोगों को लगातार ठगने का कार्य करता है। हम इसके लिए आपके रेडियो रिमझिम के माध्यम से धन्यवाद भी देंगे जिला प्रशासन को कि उन्होंने भू माफियाओं को लेकर के एक सघन अभियान चलाया, जिसमें कई लोगों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई किया गया। कुछ लोग FIR दर्ज होने के बाद से अभी भी भागे फिर रहे हैं, तो इस पर निश्चित रूप से अंकुश और रोक लगना चाहिए। और जैसे ही इस तरह की मामला सामने आती है तो जो पीड़ित पक्षकार है, अगर उसके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी हुआ है तो उसको जो है सिविल सूट करना होगा, जिसमें उसको डीड ऑफ कैंसिलेशन का सूट फाइल करना होगा। उसको न्यायालय के सामने ये बताना होगा कि यह जो डीड मेरे द्वारा निष्पादित किया गया है, इसमें हमारे साथ धोखाधड़ी छल किया गया है, हम अमुक जमीन लिखने के लिए आए थे लेकिन हमको धोखे से इस जमीन को लिखवा लिया गया, ऐसा करके उसमें उसका प्रेयर रहेगा कि इस डीड को जो है शून्य घोषित किया जाए। तो यह अधिकार है उसका, वह सिविल न्यायालय में जाएगा तो उसको अपना अधिकार।
0: इसका जो है समय अवधि भी कुछ होता है, जमीन हम रजिस्ट्री किए उसके कितना दिन के अंदर मतलब इस डीड को दायर करें।
1: हाँ, जमीन रजिस्ट्री करने के 3 साल के अंदर।
0: अच्छा,
1: और 3 साल का यह पीरियड जब उसको जानकारी में आई उस दिन से काउंट होगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: जमीन जब हम लिख दिए
0: हाँ,
1: तो लिखने के बाद से हमारे पास हमारे साथ फ्रॉड हुआ
0: हाँ,
1: यह जैसे ही उसको जानकारी होगी
0: हाँ,
1: उस दिन से 3 साल काउंट किया जाएगा। मैंने विशेष परिस्थिति में उसको एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे हम आज जमीन लिख दिए 2 साल तक हमको पता ही नहीं चला कि हम क्या जमीन लिखे हैं, हमको 2 साल के बाद जानकारी हुई तो डेट ऑफ नॉलेज से लिमिटेशन 3 ईयर।
0: अच्छा, उसका दाखिल खारिज या मालगुजारी का रसीद कट गया है तब पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जमीन पर?
1: जी, अब अगर उसका दाखिल खारिज हो गया है या जमाबंदी उसका हो गया है, मालगुजारी रसीद भी कटा रहा है, तो चूंकि उसको यह टोटल हो जाने के बाद जो पीड़ित पक्षकार है उसको क्या इंटाइटल रह जाता है, इसका मतलब कि बाकायदे उस जमीन पर उसकी सहमति थी तभी ना वह जोताबाद किया है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वह जोताबाद कर लिया तो यह तो माना जाएगा कि उसके कॉन्सेंट से हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में तो उसको कोई रिमेडी नहीं मिलेगा। उसको सुन मैंने बिफोर तुरंत उसको जैसे ही जानकारी हुई तुरंत उसको जाएगा तभी जाके उसको रिमेडी मिलेगा,
0: यानी न्यायालय में तुरंत पहुंच जाए।
1: हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आज इस तरह का चीट हुआ तो हम 20 साल के बाद से जाके बात करेंगे तो ऐसी हालत।
0: वकील साहब, एक व्यक्ति रेडियो रिमझिम 90.4 के कार्यालय में आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि जमाबंदी मेरे दादाजी के नाम से था और मेरे दादाजी के 2 लड़के थे, दोनों आदमी आधा आधा हम लोग बांट लिए, फिर जो है पहला पक्षकार जो है अपना सारा जमीन बेच दिया और दूसरे पक्षकार पर अपना दावा रखा चूंकि दादाजी के नाम से जमाबंदी था इसमें भी मेरा हिस्सा होता है, तो कानून के दृष्टि से यह कहां तक उचित है?
1: देखिए, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वह चूंकि यह प्रश्न है उसमें जमीन दादा
0: माने पूर्वजों की जमीन,
1: पूर्वजों की जमीन है
0: जी,
1: तो पूर्वजों की जमीन है तो दादा की जमीन है, तो उस सूरत में जो भी जमीन है दादा की प्रॉपर्टी है तो उसमें उनके मरने के बाद से उनके जितने पुत्र हुए हैं सबका इक्वल शेयर हुआ। अगर वो उस संपत्ति में से अगर उनके कहने का मतलब उनके चाचा अगर आधा संपत्ति बेच दिए हैं तो आधा अगर जो बचा है शेयर उसमें उनका कोई हक नहीं हुआ, वो तो अपना हक पहले ही बेच चुके हैं।
0: यानी यह जो है प्रथम पक्ष को परेशान करने के लिए।
1: हाँ हाँ, परेशान करने के
0: माने ऐसे मामले जो है बहुत सारे आ रहे हैं। जमीन संबंधी एक और विवाद होता है कि जमीन सड़क के किनारे जिनका मकान दुकान या कुछ भी है, गांव हो या शहर हो, क्या कोई ऐसा नियम है कि सड़क को इतना फीट छोड़कर घर द्वार बनाना है या शहर के सड़क के ऊपर तक चढ़ जाना है, क्या कोई नियम प्रावधान है?
1: हाँ, बिल्कुल प्रावधान है। जहाँ भी जो भी एरिया नगर पंचायत
0: जी
1: या नगर परिषद
0: जी
1: या नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं जो भी स्थान, वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा व्यवस्थाएं जो है यह है कि जो भी मकान बनाया जाएगा उस मकान के चारों तरफ 3 फीट जमीन छोड़ना है, ताकि भविष्य में घर बनने के बाद 3-3 फीट चारों तरफ से छूटा रहेगा तो जिधर से रास्ता नाला या जो भी चीज निकालने की सुविधा होगी उधर से निकलेगा। इसलिए नगर पंचायत क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र या महानगर में भी इस तरह का है, कहीं भी उस क्षेत्र में आप घर बनाइएगा तो आपको अपने घर के चारों तरफ 3 फीट छोड़ करके ही मकान बनाने।
0: अब आता है थोड़ा सा हम लोग क्रिमिनल लॉ के तरफ चलते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि व्यक्ति नहीं है, कहीं बाहर कमा रहा है, उसके नाम पर FIR यहाँ हो गया, उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
1: अगर बाहर है और उसके नाम से FIR लॉज हो गया
0: जी,
1: तो वैसी सूरत में जैसे ही उसको जानकारी हो उसको तुरंत अपने संबंधित थाने से संपर्क करना चाहिए या जिले के बड़ी पुलिस पदाधिकारी से संपर्क करना चाहिए, वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना एविडेंस देना चाहिए उसको कि अमुक घटना के समय मैं यहाँ नहीं था, मुझे झूठे रूप से इस मुकदमा में फंसाया गया है, तो उसको तुरंत बड़ी पदाधिकारियों से मिलकर संबंधित थाना से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहिए।
0: यदि वह न्यायालय में जाता है तो अपने बात को कहने, तो क्या कानूनी सलाह होगा उसमें? एक तो हो गया कि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को पास अपने बातों को रखेगा, दूसरी कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा?
1: और दूसरी प्रक्रिया यह है कि अगर FIR लॉज हो गया तो उसको तो हर सूरत में, अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद हुआ रहा है तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा तो न्यायालय में अपने पक्ष को रखेगा। प्रथम तो उसको उस केस में बेल लेना होगा,
0: जी जमानत लेना होगा
1: और जमानत लेना होगा, उसके बाद से उसको ट्रायल फेस करना होगा। कोर्ट देखेगा कि भाई उसके पास समुचित एविडेंस है कि उसको फाल्सली इस केस में इम्प्लिकेटेड किया गया है, फंसाया गया है, तो निश्चित रूप से तो न्याय मिलेगा। हमने इस चीज को बड़ी पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय थाने से संपर्क करने के लिए पूर्व में ही इसलिए कहा कि अभी FIR हो जाने से केस पूर्ण नहीं होता है, उसमें कई केस में दो दो माह तीन तीन बार तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, अनुसंधान चलता है।
0: जी जी।
1: तो उस दौरान ही अगर वह व्यक्ति स्थानीय पुलिस या पुलिस के बड़ी पदाधिकारियों से संपर्क करता है और अपना प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर साक्ष्य उनके समक्ष रख देता है कि भाई हम निर्दोष हैं, ये इसके संदर्भ में हम एविडेंस पेश कर रहे हैं कि जब घटना हुई हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर थे, तो अनुसंधान के ही दौरान पुलिस ही उसका नाम निकाल देगी। तो पुलिस अगर उसका नाम निकाल देती है उस केस से, तो चार्जशीट उसके अगर अगेंस्ट नहीं जाएगा तो उसको बेलोल और न्यायालय की प्रक्रिया से उसको नहीं गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज उसको न्यायालय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
0: बहुत अच्छी बात बताई। आजकल जो है विशेष करके युवा वर्ग जो है अपने सामान का खरीदारी इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामान का मोबाइल का ऑर्डर दिया गया, पैसा भी ले लिया, और वह कंपनी दिल्ली में या मुंबई में या जहां भी है वहां से जो है दूसरा खाली डब्बा भेज दिया। उस स्थिति में उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, क्या करेगा?
1: ये ऐसी स्थिति में उसके लिए हर एक जिला में एक साइबर सेल का गठन किया गया है।
0: जी।
1: तो उसमें जो भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी ऑफेंसेस हो रहा है उसके लिए बकायदा पीड़ित व्यक्ति को साइबर सेल में अपना कंप्लेन दर्ज कराना चाहिए, और उसमें जो है साइबर सेल की पुलिस जो है उस पर अपना अनुसंधान करेगी, और उसमें जो इस तरह का जो अपराध जिनके द्वारा कारित किया गया है उनको पकड़ेगी।
0: अच्छा वकील साहब, यह बताया जाए कि जब भी चुनाव हो आता है तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो व्यक्ति घर पर है या बाहर है उसमें करीब करीब 20% या 10% लोगों के नाम पर 107 हो जाता है और उन्हें जमानत लेना पड़ता है, यह कौन सी प्रक्रिया है?
1: यह प्रक्रिया है कि इसमें देखा जाता उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं से या तो उसका आपराधिक इतिहास रहा हो, या प्रशासन को लगे वहाँ स्थानीय प्रशासन के रिपोर्ट पर ही 107 की प्रक्रिया आरंभ की जाती है, उसमें उनको लगता है कि भाई उनके पास हमारे पास कॉज है कि इनके द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में व्यवधान पैदा किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में उन पर 107 की कार्रवाई आरंभ की जाती है और उनसे बाकायदे बॉन्ड लिया जाता है कि हम किसी प्रकार का परेशानी हम भंग नहीं करेंगे।
0: तो जमीन संबंधी बहुत सारे मुद्दे आए, साइबर सेल का बात आया और आपराधिक गतिविधियों के संबंधी भी कानूनी पहलुओं पर आपने अपनी बातें रखी। एक मुख्य मुद्दा जो है महिलाओं का छूट रहा है, आजकल ये अक्सर पेपर में, समाचार पत्रों में यह सुनने के लिए मिलता है कि व्यक्ति जो है गांव में शादी किया, फिर कहीं बाहर चला गया, वहां भी एक शादी कर लिया, उस स्थिति में एगो गांव में किया फिर एक बाहर कर लिया, उस स्थिति में उस पुरुष की या महिला की क्या स्थिति होगी कानून के नजर में?
1: जी जी, कानून के नजर में हिंदू धर्म के अनुसार जो है यहाँ की जो वैवाहिक व्यवस्था है उनके अनुसार कानून में यह प्रावधान है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर उसकी पत्नी जीवित हो तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर दूसरी शादी भी

0: हुआ।
1: जी जी।
0: और एक प्रश्न यह आ रहा है कि कहीं कहीं गांव में जो कमजोर किस्म की महिलाएं हैं, और पेपर में भी सुनने को मिलता है या गांव देहात में भी सुनने को मिलता है, किसी महिला को डायल शब्द के नाम से पुकारा जाता है, तो क्या किसी महिला को डायन कहने का कहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया में क्या प्रावधान है, उसे बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: जी जी, यह बहुत सुंदर सवाल आपने रखा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब बहुत कम आ रही है। पहले इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती थी, इसलिए कि लोगों में समय नहीं था और काफी लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। धीरे धीरे अब हमारा समाज शैक्षिक आर्थिक हर तरह से मजबूत हो रहा है और लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई यह एक महज एक अंधविश्वास है, डायन एक्चुअली कोई होता नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती है
0: जी,
1: तो उसके लिए
0: कानून क्या
1: कानूनी प्रावधान है, स्पेशल इस पर एक एक्ट ही बना हुआ है
0: जी।
1: डायन एक्ट के नाम से एक स्पेशल एक्ट ही है, द बीच एक्ट। तो उसमें जो है प्रावधान है कि अगर किसी को भी आप डायन करके संबोधित कर रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से दंड के भागी हैं। अगर यह साबित होता है कि इस तरह की कार्य आपके द्वारा किया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है डायन कह करके, तो अगर वह अदालत में न्यायालय में आती हैं या स्थानीय थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं, तो इस घटना को कारित करने वाला व्यक्ति दंडित होगा, उस पर कानूनी
0: कार्रवाई की होगी। हाँ,
1: होगी।
0: तो अभी हम बातचीत कर रहे थे 90.4 में रेडियो रिमझिम पर श्री मुकेश कुमार पांडे जिले के वरीय अधिवक्ता, और यह जो है गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के उपभोक्ता फोरम के ठीक सामने बैठते हैं, और यदि कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो इन्हें व्यक्तिगत रूप से आप वकील साहब से मिल सकते हैं। वैसे वकील साहब जिला मुख्यालय गोपालगंज के अधिवक्ता नगर में निवास भी करते हैं, वार्ड नंबर 14 में, वहाँ भी आप इनसे मिल सकते हैं। हम चाहेंगे वकील साहब कि आप अपना मोबाइल नंबर हमारे श्रोताओं को बताएं, कि कोई श्रोता यदि मोबाइल पर बात करना चाहे या बहुत ज़्यादा दूरी पर है या पूर्वी चंपारण या सिवान का है, जहाँ तक हम लोगों की आवाज़ जाती है, वहाँ से कुछ पूछना चाहे तो कृपया अपना मोबाइल नंबर बताएं।
1: जी जी, मेरा मोबाइल नंबर हो गया 9431088717।
0: एक बार पुनः और बताया जाए।
1: जी, मोबाइल नंबर नोट कर लिया जाए मेरा, जो भी हमारे रेडियो रिमझिम के श्रोता हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस संवाद को सुन रहे हैं, कृपया मेरा नंबर आप नोट कर लें, और कभी भी किसी तरह की लीगल अगर आपको जानकारी चाहिए,
0: हाँ लीगल एडवाइस चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए
1: जी, तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं।
0: एक बार अपना मोबाइल नंबर फिर बताएं।
1: मेरा मोबाइल नंबर हो गया 9431088717।
0: आपने अपने व्यस्त समय में रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में अपना मूल्यवान समय दिया, रेडियो रिमझिम के श्रोताओं के तरफ से, और जहां तक हमारी आवाज जा रही है उन तमाम श्रोताओं के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: जी जी, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और इस पर चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम कानूनी सलाह, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो रिमझिम 90.4 FM से। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8877-85-93-09 पे लिख के भेज सकते हैं। फिर आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में कोई भी शिकायत या सुझाव है तो हमारे APM नंबर 72-77-16-65-96 पे भेज सकते हैं।

अब मुझे यानी कि अपने रेडियो दोस्त आलिया को दीजिए इस शो से जाने की इजाजत। लेकिन आप सभी कहीं मत जाइए और ना ही चैनल घुमाइए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84-710-30-992 या 90-65-65-750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।
11: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते, मैं हूं सारा अली खान।
0: मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894-18744।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
7: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगी। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा, 2,500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे तब इन मिलों में काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को इससे जल्द खाली करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण विभाग आवास आधिकारिक तौर पर आवंटित लोगों को सौंपेगा। श्री चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति समझकर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसे हर हाल में खाली करना होगा।
1: कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। इधर देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर मुजफ्फरपुर के चैनपुर गांव के रहने वाले हैं। प्रदेश भर में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान अब तक 81% मामलों का निष्पादन किया गया है। राज्य सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार पंचायतों और नगर निकायों में 2000 से अधिक स्थानों पर सहयोग शिविर लगाया गया। इस दौरान सहयोग पोर्टल पर 2,06,928 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,59,000 से अधिक शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। शेखपुरा, कटिहार, पश्चिम चंपारण, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अररिया, सारण और सहरसा जिले में 90% मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 2,500 पदाधिकारियों को 10 दिनों के भीतर मामले के निष्पादन नहीं करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के संकल्प सबका सम्मान जीवन आसान के तहत 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर श्री नवीन आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना में क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद श्री नवीन ने बांकीपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में इस वर्ष रबी मौसम में फसल क्षति के लिए जल्द ही 2,00,000 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि विभाग को किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रबी मौसम में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बारिश से प्रदेश के 13 जिलों में गेहूं, चना

मसूर, मक्का, फल और सब्जी की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभागीय संचिका पर मंजूरी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह के दौरान विभाग ने 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारियों को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी भूमिहीन परिवार नहीं है। श्री जायसवाल ने पटना में समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित आवेदक से संवाद करें। उन्होंने दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई माफी सहित आम जन से जुड़ी सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन के लिए होने वाली परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार अब राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। इसके बदले यूजीसी नेट स्कोर को ही प्रवेश का आधार बनाया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि यूजीसी की अधिसूचना और कुलाधिपति के निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
1: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 2 श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जन भागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगे। बिहार की भी कई पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण 30 मई को प्रभावित CUET UG 2026 परीक्षा का दोबारा आयोजन करने का निर्णय लिया है। पुनर्परीक्षा 6 और 7 जून को आयोजित होगी। NTA ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है।
3: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
0: पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत खान कोचिंग संस्थान में बीती रात गोलीबारी, तोड़फोड़ और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि CCTV फुटेज से फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। खान सर ने अपने संस्थान पर 8 से 10 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के नवरत्न बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने मुख्य आरोपी टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 35 किलो गांजा और 36 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई है। औरंगाबाद जिले के नबीनगर स्थित NTPC सुपर थर्मल पावर परियोजना के बालिका विकास के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू हो गया है। CISF के महानिरीक्षक प्रबोध चंद्र, NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक LK बेहरा और अन्य ने इसका शुभारंभ किया। राज्य सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को अब बिना किसी परीक्षा के सीधी नौकरी दी जाएगी। खिलाड़ियों के मेडल के हिसाब से उनके पद तय होंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी सत्र 2026-27 के लिए चयनकर्ता और सहयोगी स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। जारी विज्ञापन के अनुसार पुरुष सीनियर चयन समिति, जूनियर क्रिकेट समिति और महिला चयन समिति के लिए चयनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच सहित कई सहयोगी स्टाफ पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग मामले में केंद्र सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। अखबार लिखता है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए। दैनिक जागरण लिखता है, प्रदेश के मदरसों की जांच के लिए हर प्रखंड में बनेगी 3 सदस्यीय कमेटी। दैनिक भास्कर की मुख्य खबर है, बिहार का गंगा पथ, 3 नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली लखनऊ की राह आसान। प्रभात खबर ने औद्योगिक विकास से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, अमूल फतुहा में लगाएगी 200 करोड़ रुपए की यूनिट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, 2500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403। सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हो बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
14: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
15: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
16: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
15: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको, रोड,
16: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
15: और अब सिवान जिले में भी हमारी दो शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
16: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
15: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
16: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
15: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
16: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
17: Now pick it up, pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
17: Pick it up, pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हम थागर से बोलते हैं, दामाजी प्रसाद
1: जी। क्या हाल है आपका?
2: हमारा हाल ठीक है, अपना हाल बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
2: दिन तक गुमसुम हुआ है
1: जी।
2: आप गाना सुनवाइए।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: मैं उठा ले जाऊंगा तुझे डोली में, देखते रह जाएगी तुम्हारी सखिया।
1: अच्छा, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
2: जितना लोग सुनते सब कोई अदालत चौधरी बारे हमारे सार लोग यहाँ बारे हम बने बहुत लोग।
1: ठीक है,
2: नमस्ते।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: प्रणाम मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल है
1: मैम? ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है,
1: बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: ठीक है, फिर अपना नाम बताएं।
1: साफी मैम।
0: और आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: सिवान जिला पड़ता है लकड़ीदगा।
0: अच्छा, क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं मैम, आपसे बात हो।
0: तो फिर बताइए क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: जी मैम बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ ऐसे ही कोई हिंदी सॉन्ग है।
0: जी
1: जी वही वाला बता दीजिए।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: रेडियो जो सुनते हैं।
0: ओके।
1: और ऋषभा को और नासिम को तब सुनती है तब मेरी सिस्टर।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम कॉल उठाने के लिए।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो,
15: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो गुंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
14: गुड आफ्टरनून मैम।
15: गुड आफ्टरनून, आपका क्या नाम है?
14: मेरा अलिफा नाम है।
15: क्या हाल है?
14: ठीक है, अपना बताइए।
15: मेरा भी ठीक है। कहाँ से हैं आप?
14: मैं सिवान जिले से, एक छोटे से गांव से बोल रही हूँ, लकड़ीधर का।
15: अच्छा, क्या कर रही हैं?
14: मैं अभी पढ़ाई कर रही थी।
15: किस क्लास में पढ़ती हैं?
14: मैं 10th में।
15: तो क्या फरमाइश है आपकी?
14: यस, आप कैसी हैं मैम?
15: मैं ठीक हूँ। अपना फरमाइश बता दीजिए।
14: मेरा फरमाइश है तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया।
15: आगे भी गाइए थोड़ा सा।
14: मुझको भावे गलिया तेरी गलिया, ऐसे गाना है ना?
15: बहुत अच्छा गा लेती हैं।
14: प्रिया मैम,
15: ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
14: मेरी सिस्टर है लो, उन लोगों को और रेडियो रिमझिम सभी दोस्तों को।
15: ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, बहुत
1: हेलो जी,
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: प्रणाम जी।
0: प्रणाम, क्या नाम है आपका?
1: नाज
0: क्या हाल है?
1: जी ठीक है, आप अपना बताइए मैम।
0: मेरा भी ठीक है।
1: क्या हो रहा है?
0: अभी तो आपसे बात हो रहा है, आप कहाँ से हैं? जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरी फरमाइश है, मैंने तेरा नाम दिया, क्योंकि यही वो लगाना है ना भाई।
0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी मेरी अप्पी है, सबो अप्पी, लक्षा अप्पी, गुलशन अप्पी, मेरे जीजू है, सबको सुनाना चाहेंगे और रेडियो रिंगिंग के सभी सदस्य।
0: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जात, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ,
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
9: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: हेलो, गुड मॉर्निंग।
15: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिन्यू के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। हेलो,
16: बोलिए मैम,
15: क्या नाम है आपका?
16: मेरा नाम है सोनम।
15: और कहाँ से हैं आप?
16: गोपालगंज से।
15: क्या हाल है आपका?
16: ठीक है, अपना बताइए।
15: मेरा भी बढ़िया है। फिर बताएं, क्या फरमाइश है आपकी?
16: ये फरमाइश है,

0: बहुत अच्छा गा लेती हैं आप।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, कितना अच्छा मुझे तारीफ करती
0: है। ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे जीजू हैं, राजू जीजू, साहेब जीजू, इमरान जीजू, लड्डू जीजू, और मेरी अप्पी है सबो अप्पी, सबनम अप्पी, फलक अप्पी, गुलशन अप्पी, नासिन अप्पी, साबिन अप्पी, सीफा, फजर, आयशा, सनाया, मेरी अम्मी, अब्बू,
0: बताइए,
1: मेरे भाईजान हैं और मेरी खाला की लड़की है लोग।
0: अच्छा, ठीक है फिर।
1: और आपको भी सुनाना चाहते हैं?
0: धन्यवाद,
1: आवाज बहुत अच्छा है मैम।
0: थैंक यू। फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंग कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। क्या नाम है आपका? क्या
1: मेरा नाम आयशा है। ठीक
0: हाल है? कहाँ
1: है, अपना बताइए।
0: से हैं आप?
1: मैं बोल रही हूँ मुजफ्फरपुर से। अभी
0: क्या हो रहा है अभी? तो
1: कुछ नहीं, आपसे बात हो रहा है। मेरी
0: क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है, बंजारे को घर।
0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे रेडियो रिंगटोन के सभी सदस्य को और मेरे जीजू लोग को, जैसे कि सफी अहमद जीजू, मैनुद्दीन जीजू, इमरान जीजू, फलक
0: जी
1: अपी, सबनम अपी, चाहत अपी, साबिन अपी, नासिम अपी, आयशा, फजर, सनाया, इनाया, इस्माइल भाईजान को, और सनाया, इनाया, सैम, अब्बास,
0: जी
1: हमजा, हमजू, हमजू को भी, हमाद को भी, और नाजी अपी, और साबिन अपी, नासिन अपी, गुलशन अपी।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
2: और 9097160602।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 9452111001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: Now pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: रेडियो रेंज में नमस्कार।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज में कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: हमको चांद का पार्क गाना सुनना है।
11: जी, गाना आपको सुनाया जाएगा, पहले अपना नाम बता दें।
10: संजय शाह
11: और
10: ग्राम फुली डुमर, जिला बांका, बिहार से बोल रहे हैं।
11: कैसे हैं आप?
10: ठीक है।
11: क्या हो रहा है अभी?
10: अभी तो यही दुकान पर है।
11: अच्छा,
10: दुकाने चलाते हैं।
11: फिर बताइए
10: आपका जो है सोच सुनते हैं हम बराबर।
11: अच्छा जी,
10: ट्राई करते करते तब अभी लगा।
11: लगता है थोड़ा बहुत, हाँ। कॉल आते रहते हैं ना इसीलिए।
10: हाँ, चांद के पार चलो।
11: जी, और ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
10: आपको और पूरे श्रोतागण को।
11: बिल्कुल, गाना सुना दिया जाएगा। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
10: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
1: नमस्कार, क्या हाल है?
0: कुछ नहीं मैम, बस बैठे थे मैम आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, तो शो तो स्टार्ट हो गया मैम। तो आज एक परवाही था फिल्म है कुछ कुछ होता है और गाने के बोल है तुझे याद दिन मेरी आई।
1: अच्छा।
0: यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
3: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
3: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
14: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता
9: मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
15: कॉल करे 87-894-18744।
16: Now pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
16: Pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
18: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
19: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
20: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
21: जी मैम नमस्ते, सुमित कुमार बात कर रहा हूँ मैम, नांग जामनगर गुजरात।
20: जी क्या हाल है आपका?
21: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे रेडियो रंजन सुनते हुए मैम।
20: जी फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
21: जी आज सुनवा दीजिएगा फिल्म दिल वाले का, जीता था जिसके लिए, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दोस्त लोग सुनते हैं, कभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं। आप कौन सा मैम बात कर रहे हैं?
20: भारती बोल रहे हूँ।
21: जी मैम
20: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
21: ओके मैम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: हेलो मैम, नमस्कार। गुड
0: नमस्कार,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
1: कैसा है?
0: ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा नाम श्री भगवान सिंह है।
0: बोलिए।
1: मैं दोहा कटा से बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: मेरा आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो एक गाना सुना है, तो आपका पसंद सा अच्छा गाना सुना दिए।
0: अभी बता दें आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: हम गाना सुनना चाहेंगे वेडिंग एनिवर्सरी पर, कोई अच्छा गाना जैसे शादी मुबारक हो।
0: जी,
1: वह गाना भी तैयार, वही सुना
0: दिया। ओके, गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: हाँ, हमारे सुनने वाले हैं हमारे पास काफी प्रसाद, नागराज, चंदन भाई, दिनेश कुमार, सचिन कुमार, कमल सिंह, शंकु अमीषा और पूरे जो रिम के दर्शक हैं उन सब के लिए। ओके
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे, मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़, भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 95238 7478 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: प्रणाम मैडम,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
8: गाना सुनने के बाद सुनवा दे कालीकुम से बोला था।
9: अच्छा,
8: तो सब कुशल मंगल कही?
9: सब बढ़िया बा, अपन बताए।
8: ठीक है बा, हम से तो पहाड़ इलाका में रह, गर्मी कम बा।
9: नहीं, तो बहुत ज्यादा गर्मी बा।
8: हाँ, बिहार में तो गर्मी रहे करेला। हमने की 6 महीना पर जाए तो पढ़ ना सके, कितना भी फैन चले, पंखा चले ना, तभी भी मच्छर मारने के नाम ना, इतना गर्मी फलेगी। हमने के यहाँ पर बन तो एक कबर के जा रहा है।
9: अच्छा, ये तो मतलब भयंकर अभी गर्मी पड़ता
8: है। हाँ, 25-26 साल से रहा पानी वहाँ पर, वहाँ पर मन लगा
9: बढ़िया पर हुआ, ठंडी में पानी अच्छा।
8: हाँ, गाँव में जाने तो मन ही नहीं, इतना गर्मी से परेशान होकर जाए। दो दिन चार दिन रहे भाग जाए। हमें तो समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बगल में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ल है। तो सुना दे मैडम प्रणाम।
9: ठीक बा, गाना प्ले करता ही सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करे खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद
8: जी मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। क्या नाम है आपका?
1: बूटा सिंह माणपणे, नत्रोड़ तलमंडी साहब, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से।
0: ओके, क्या हाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया जी, तुम दसो ठीक हो? मैनु अज गाना सुना दो जी, संगम फिल्म का गाना है जी, डबली वाले डबली।
0: जी, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: अपने दोस्त है महेंद्र भट्टी मंडी कल तो, जगदीश राय गर्ग मानसा तो, जगजीत मट्टू मौर कल तो, मकीर घड़ी साज गोनिया ने तो, सतीश मगलानी मलोर तो, ये दोस्त अपने।
0: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भेने, धन्यवाद।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी

0: क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज प्रोपराइटर सोनू जी संपर्क करें 99-399-66-999।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है हाँ?
2: भरोसे वाले से लेंगे
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
0: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहां के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जात? आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
10: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
11: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
12: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
11: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
12: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
12: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
0: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: जी नमस्ते।

0: सुन रहा तू?
1: जी नमस्कार, क्या हो रहा है फिर?
0: अभी तक कुछ ही नहीं हो रहा है, इतना गर्मी है ना।
1: गर्मी तो बढ़ते जा रही है, अभी गर्मी और बढ़ेगी।
0: जी जी,
1: फिर गर्मी में बच के रहे, ख्याल रखे अपना।
0: जी जी, अभी पेड़ के नीचे है।
1: अच्छा, फिर बताएं क्या गाना सुनना चाहते हैं?
0: फरमाइश भाई है जीता का, जिसके लिए दिल भारत फिल्म का।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहेंगे?
0: अमन सिंहू।
1: अच्छा ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। मैं कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। थोड़ा तेज बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
1: गाना सुनना है
0: जी बताएं, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
1: हिंदी गाना कोई भी सुनाते हैं।
0: ये फरमाइश तो है, तो आप खुद की पसंद से बता दें।
1: कोई भी गाना, दिल जारे मूवी के, दिल जारे मूवी के गाना।
0: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग इसका?
1: वो कोई भी गाना सुना, दिल जारे मूवी के।
0: जी, फिर गाना और ये चीज को सुनाना चाहेंगे आप? अच्छा, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाते हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99-393-65-930।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
11: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
12: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
10: और 90-97-61-60-02।
13: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियोरियम झिम 90.4 FM पे। समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करनी है तो आप लोगों को पुराने गाने की फरमाइश करनी है। और यहाँ पे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे भेजने का। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया दीपक एंड जेलर जी। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आप तो कभी पूछते हैं नहीं, चलो हम ही पूछ लेते हैं क्या हाल है आपका। तो बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। लिखी है हाय अस्सलाम वालेकुम, आज मुझे एक सॉन्ग सुनना है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलुलिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्ते नमस्कार कैसे हैं आप, मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं। तो बिल्कुल मैं भी बढ़िया हूं और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से और कहते हैं कि आज देहरादून का मौसम बहुत ही सुहाना है क्योंकि आज बारिश अच्छा हुआ और गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और थोड़ा सा सब्र करें और आप जहाँ हैं वहीं पे स्थिर रहें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय सर नमस्ते, सॉन्ग दिल कहता है चल उनसे मिल, निशा सुकुलवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, हाय हेलो सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करते हैं दिलीप राम जी दिल्ली से और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैसेज करने वाले लिखे हुए हैं कि मैं भी जुड़ गया हूं MP महमूद केरला से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और कहते हैं कि और सब ठीक है ना सोनू भाई। बिल्कुल ठीक ठाक आप सभी के बीच उपस्थित है कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं, आप सब बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं दीपक एंड जेलर जी की। और इनकी दुख अभी ख़त्म हुई नहीं और अभी शुक्रिया अदा करने पर लगे हुए हैं, तो चलिए इनके गाने के साथ शुक्रिया अदा किया जाए और इंजॉय किया जाए रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

कमाल के सॉन्ग रेडियो एमसी 94 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि पुराने गाने या 90s के गाने की फरमाइश करना है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश करती है शबीना खातून फ्रॉम दुलिया से। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे और कुछ से मैसेज है तो देख ले, फिर इनके गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज आगे पहुँचा हुआ है, हेलो। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप कौन है आगे तो मैसेज सेंड करें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो, हाय सर जी, प्रणाम सलाम मेरे तरफ से प्यारे प्यारे अल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम। बोलिएगा और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया उसका गांव प्रखंड से। और बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहती हैं कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूँ हम किसी पे फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ा है दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती कभी बेवफा नहीं होते। मस्त सैड सॉन्ग। और आगे मैसेज अभी टाइप हो रहे हैं तो बिल्कुल करते रहे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज में लिखा गया है कि सर कल मैं सॉन्ग भेजी थी पर नहीं आप सुनाए। तो बिल्कुल कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी डिवाइस में, जिसके कारण जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे वो क्लियर ओपन नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हम कुछ ही मैसेज शामिल किए और कुछ ही गाने प्ले कर पाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी रोल नंबर 5 पे है, देखते हैं आप कब तक कोशिश करके गाना सुनाते हैं। बिल्कुल कोशिश है सबकी फरमाइश पूरी करने की, जितना समय मिला है उतना ही में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप, और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और आज मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए नाइस सॉन्ग। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, मुझे गाना सुनना है भाई। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में सबिता चौहान। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी, और मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और लग रहा है कि दिल टूटा हुआ है। बिल्कुल दीपक भाई जी एकदम टूट चुके हैं, अभी शुक्रिया अदा करने पर ही लगे हुए हैं। और तो भाई है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है हेलो भैया, आप कैसे हैं, और सजदा अंसारी मीरगंज से, तो बिल्कुल बढ़िया और आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज अभी कई टाइप हो रहे हैं तो फिलहाल आप लोग मैसेज करते रहें और हम आगे बढ़ते हैं। अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं शबीना खातून की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है दुनिया में आए हो तो लव कर लो। डेडिकेट आपको एंड शबा अपी, अफसाना अपी, रोशनी अपी, सजदा जी और गुड़िया जी, हाजरा सिस्टर, खुशी जी, निशा जी, शफाक जी, हिना जी, शाहजहाँ जी, शिल्पी जी, सोनी जी, समीर भाई, कमरान भाई और इरफान भैया, साहिल भाई, दीपक भाई, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी, सावन शर्मा जी, और जो छूट गए उन सभी को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछम 94 FM पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडो पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27।
10: 22 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 एफएम पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का आगे मैसेज कई पहुंचे हुए हैं, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे रोहित जी की, और यह मैसेज देहरादून से किए हुए हैं। और गाने की फरमाइश करते हैं पुराने, और गाने का बोल है आज जाने की जिद ना करो। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे ओरिजिनल सॉन्ग के साथ, फरीदा खानून गजल्स सॉन्ग है। तो आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो देख ले, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि फूल है गुलाब का सुगंध लेते रहिए, मन है समुंदर नहाते रहिए, प्रेम है रेडियो रिमझिम हमें सा मुस्कुराते रहिए, नमस्ते नमस्ते कागज़ है गुलाब का मोहब्बत है प्यार का, दिल तो उसी पे मचलता है जो रेडियो रिमझिम पे नाम भेजता है, गाना लिखे जो खत मुझे तेरी याद में। सभी श्रोताओं के साथ सावन शर्मा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, मैं आदित्य राजीव नगर पोस्ट ऑफिस गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में आदित्य जी, आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है निशा जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि आज मेरी किस्मत अच्छी है, मैं अपना गाना सुन रही हूँ 3 सप्ताह बाद, थैंक यू आपको सॉन्ग सुनाने के लिए, और दुनिया में आए हो तो लव भी जरूरी करना चाहिए, और लव में ब्रेकअप भी होना चाहिए वरना जिंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। और कहती हैं कि गर्मी आ गई है दोस्तों, थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि गर्मी पूरी कोशिश करने वाली है कि हमारी शक्लें आधार कार्ड से मैच करवाने की, बिल्कुल संभल के रहना ही चाहिए, धूप बहुत निकल चुकी है और ये लगता है कि आगे कई दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सबीना सिस्टर मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया, सजदान सारी मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं गुलाम हुसैन जी, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता गुनाह होने से पहले। तो ये तो खुद की अंदर ही एक इंसान बसा हुआ है जो हर कुछ कराता है, ये रोकने वाले और कराने वाले एक ही इंसान के अंदर दो इंसान बसा हुआ है, जो एक कहता है कि आगे बढ़, एक कहता है कि अभी रुक। तो जैसा आदेश मिलता है वैसे तीसरा इंसान करता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सनी राज पटेल हरियरपुर से और सॉन्ग, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए सबीना सिस्टर, और मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। आगे बढ़ते हैं, अब आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं रोहित जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे।

0: रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे मैसेज हमारे श्रोतागढ़ करते हैं रोहित जी और कहते हैं कि दूसरी गाने हैं। तो चलिए अब आगे हम सभी तो गाने एंजॉय कर चुके हैं, अगले सप्ताह ये गाने प्ले करने की कोशिश रहेगा। और ये गाने हमको दिखाई दिए थे लेकिन आपने जो अंतिम लाइन लिखा हुआ है कि जाने की जिद ना करो, इसी के कारण इस गाने को हमने प्ले कर दिया। हमें लगा कि यही गाने हैं। सो चलिए आगे अब अगली बार इंजॉय किया जाएगा इस गाने को। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भैया एक खुशखबरी है, मैसेज देखिए। तो कौन सी खुशखबरी है? और मैसेज जो आए हुए थे वो मैंने तो शामिल कर ही दिए हैं और कुछ तो दिख नहीं रहा है। मैसेज करती हैं सजदा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करती हैं निर्मला कुमारी और गाने की फरमाइश करती हैं दिल लगैनी जितनी बार धोखा पैनी उतने बार। उदित नारायण जी की आवाज़ में भोजपुरी गाने की फरमाइश करती हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे।
1: दिलवा के चाहत हमर

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478934400।

0: छठ पे है।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कमल के संग रेडियो रामछीम 94.4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और आगे मैसेज और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे निशा शुक्लवा से करती हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, चल उनसे मिल। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और यहाँ पे आगे मैसेज कुछ पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बिछड़ के तुमसे जिंदगी सजा लगती है, बिछड़ के तुमसे ज़िंदगी सजा लगती है, यह सांस भी जैसे मुझसे खफा लगती है, अगर उम्मीद ए वफा करूँ तो किससे करूँ, मुझको तो मेरी ज़िंदगी भी बेवफा लगती है। सुनो भाई नमस्कार, और मैं भी मिलल बेवफा ही मिलल सुपर सॉन्ग, जे भी मिलल बेवफा ही मिलल सुपर सॉन्ग कहते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा गाना सुना दी भाई, एक एक करके तो फरमाइश प्ले कर ही रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर मैं सनी राज पटेल, प्लीज़ सर प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश में है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हो गई है नाइट, बंद करो लाइट, सपनों की पकड़ो फ्लाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम एंड गुड नाइट। मैसेज करती हैं सबीना का तो फ्रॉम दिल्लिया से। बिल्कुल आगे मैसेज है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक यू सर, आपको धन्यवाद है रेडियो एम सुनने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। और यहाँ पे कौन मैसेज पहुंचा कि खुदा कभी किसी पे फिदा ना करे, कि खुदा कभी किसी पे फिदा ना करे, खुदा कभी किसी पे फिदा ना करे, अगर करे तो क्यामत तक जुदा ना करे। सुपर भोजपुरी सैड सॉन्ग, लाजवाब, बहुत दर्द है मोहब्बत में। बिल्कुल मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगले पसंद के गाने। निशा शुक्लवा से करती हैं इस गाने की फरमाइश।

94.4 FM सुनने आप सब और काफ़ी प्यारे गाने सुनने थे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश हमारे पास है और गाने का बोल दिया गया है, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में। और इस गाने के फरमाइश करते हैं श्यावन शर्मा जी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप ही के फरमाइश को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है समाप्ति का होने ही वाला है और आगे मैसेज शामिल करने का और गाने प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ से मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए शामिल कर देते हैं, फिर गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बढ़िया बढ़िया गाना बज रहे हैं सबके अपने, मेरा मनपसंद गाना बजा ही नहीं। और भैया जी आपसे फोटो के साथ भेजूंगा, तो बिल्कुल आगे अब से फोटो के साथ ही भेजिएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिलवा में बसल बाड़ी मनवा में बस जा, दिलवा में बसल बाड़ी मनवा में बस जा, दिनवा में मिलल बारी रतिया में मिल जा, क्या बताएं ऐसा है, रतिया में ना मिले तो एक बार गुड नाइटिया बोल जा। मैसेज करे था नहीं श्यावन शर्मा जी और यहाँ के गाने के फरमाइश करते हुए कार्यक्रम के समाप्त करे वाला बानी हम। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनवाई अंत में जुड़े हैं क्या करें, हाजिरी तो बिल्कुल आपकी भी हाजिरी लग गई, अंतिम गाने हम प्ले करने ही वाले हैं और श्यावन शर्मा जी की। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत ही खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बहुत ही खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, इन्हें बना दो किस्मत हमारी, हमें नहीं चाहिए जमाने की खुशियाँ, अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी। सुनो भाई सभी दोस्तों को गुड नाइट मेरे तरफ से, मैसेज करते हैं दिलीप राम जी। चलिए अंत में हम भी बोलेंगे यही, तो फिलहाल आप सब सुनते रहें रेडियो MCM 90.4 FM जो मैसेज कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी। आप सभी के बीच उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:02 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल और आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98527888291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए और हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 72776665 पे। और कॉल सिर्फ वही लोग करें जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं। जो भी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं उनके लिए व्हाट्सएप का माध्यम है, इंस्टाग्राम वालों के लिए इंस्टाग्राम का माध्यम है और कॉल का माध्यम सिर्फ उनके लिए है जो कि सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं। और आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप सभी जब भी गाने की फरमाइश कर रहे हैं तो गाने की फरमाइश, अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश करिए। कोई भी गाना ऐसे लिंक शेयर ना करिए, किसी भी अश्लील गाने की लिंक शेयर ना करिए या फिर गाने की फरमाइश नहीं करिए, क्योंकि मैं दूसरा मौका तो बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप गाने की फरमाइश चेंज कर दीजिए, हम प्ले करेंगे। तो गाने की फरमाइश जब भी करिए सोच समझ के करिए, क्योंकि अकेले आप सुनने वाले नहीं हैं, बहुत लोग हैं सुनने वाले। तो कोई भी ऐसा गाना नहीं भेजिए जिससे सुन के किसी को कोई परेशानी हो या फिर रेडियो बंद करना पड़ जाए। तो चलिए बिना देरी किए आज की शो की आगाज करते हैं। जब तक आपकी मैसेज आती है तब तक हम इंजॉय करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आप सभी के अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ काफ़ी सारे लिस्टर हमारे जुड़ चुके हैं सो से व्हाट्सएप मैसेज से। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर कॉल करिए हमें 7277166696 पे। इसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। और यहाँ बढ़ेंगे आज की पहले मैसेज की तरफ और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज है मनीष सजाग जुड़ चुके हैं फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय मैम, रेहान खान टाटा जमशेदपुर से और हमें भी गाना सुनना है। बिल्कुल आपको गाना सुनना है, आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और गाना सुनना है दिल लगा, दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। और आगे लिखते हैं कि रिश्ते वही अदाकार ने हैं, जज्बात वही जवाबदार ने, मंच वही कलाकार ने और जिंदगी वही किरदार ने। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली मैसेज की तरफ। और अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, श्री राम जुड़ चुके हैं सासाराम टू दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ धनेश मिश्रा आ चुके हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं सोनी मैम आप सही रहेंगे तो हम सब कभी सही रहेंगे। नमस्कार जी, और आपको भी नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत, बनी रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि लाजवाब सॉन्ग ओपनिंग सॉन्ग। और मैसेज करने वाली हैं प्रीति रैदास जी, विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून। और कैसी हैं मैडम जी? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी जी। और सुनाइए क्या हाल चाल है, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है आजकल और मैं आपके प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ और प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेज पहुँचे हुए हैं। और इंस्टाग्राम की तरफ रुख करेंगे तो प्राप्ति शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है, मेहताब सिद्दीक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी, कैसी हैं आप और ठीक है ना, हमको भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपको गाना सुनना है तो सुनवा देंगे। चाशनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं कि और टाइम दिन से और इतने दिन से कहाँ थी सोनी मैडम जी, आपका शो नहीं चल रहा था और हेलो माई चॉइस में भी कोई दूसरा ही कॉल ले रहा था। तो वो कोई दूसरा नहीं है, हमारी नई आरजे भारती जी हैं जो कि अभी भी हैं और आगे भी हम सभी के साथ रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। आज की पहली फरमाइश लेंगे हम व्हाट्सएप के माध्यम से। और यहाँ पर मूक जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए बानी, बिल्कुल स्वागत बैठे जुड़ गए बानी। तो एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी। और सुनील कुमार जुड़ चुके हैं बंगे बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आज की अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है रेहान खान जी की टाटा जमशेदपुर से, और इनको सुनना है गाना दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए। और आप सभी भी सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। फिलहाल एंजॉय करते हैं रान जी की फरमाइश पे इनके पसंद के गाने को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफ़ी बेहतरीन गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे रिहान खान जी टाटा जमशेदपुर से, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया है, लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, और काफ़ी बढ़िया गाना, दिल लगाने की सजा मिले या ना मिले इनाम, और सजा मिले या फिर इनाम, लेकिन दिल से किया गया प्यार इंसान को पहले से बेहतर जरूर बना देता है, या फिर प्यार में मिला दर्द जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देती है। और गाना तो काफ़ी बढ़िया था और यहाँ मैसेज भी काफ़ी सारे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ नाम मेंशन नहीं है, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ नईम जी जुड़े हुए हैं जामतारा से, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आप लोग नाम ज़रूर मेंशन किया करिए कि कौन है और कहाँ से। और यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और आगे लिखते हैं कि हाय मैम हम भी जुड़ गए हैं। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नीलकमल की आवाज़ में गाना सुनना है कोई भी। गणेश कुमार जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं कि क्या हाल है मैडम जी, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे, और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अहमद अली जुड़ चुके हैं सारे वार्ड नंबर एक से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून बोल दीजिएगा सभी को, और मैम अच्छा गाती है ऐसे ही गाते रहिए। बिल्कुल पूरी कोशिश है, और बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम गुड आफ्टरनून, हम भी जुड़ गए हैं आपके साथ, और क्या हाल है आपका, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ प्रीति जी लिख रहे हैं कि मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छा कहीं काम है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुँचा हुआ है। अर्जुन शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बिट्टू जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेहताब सिद्दीकी की है, इनको सुनना है गाना, तो चलिए प्ले कर रहे हैं, और इनको गाना सुनना है चाशनी सॉन्ग, तो इन्जॉय करते हैं मेहताब जी की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: और यहाँ मेहताब जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मैडम जी, गाना बजाने के लिए रेडियो शो में नहीं रहती है तो रेडियो सुनने में मजा नहीं आता है।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज पहुंचा हुआ है, अली सतार आलम जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम कह पाते काश उन्हें कि उन्हें हमने दिल में बसाया है, दुनिया की निगाहों से उन्हें हमेशा छुपाया है, हम जाहिर नहीं करना चाहते अपने दिल की आशिकी को कि हमने अपने यार को अपना रब बनाया है। और इस मैसेज के साथ है दनिश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक और मैसेज है और लिख रहे हैं कि आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखा हूँ डियर, इजाजत हो तो भेज दो। बिल्कुल इजाजत है और यहाँ भेज भी चुके हैं। और लिख रहे हैं कि आरजे सोनी जी मेरी प्यारी सी दोस्त, और लिख रहे हैं कि मेरी प्यारी सी दोस्त तेरी बातों में अपनापन और जोश, तेरी हंसी जैसे सुबह की किरण दिल को दे जाए सुकून हर क्षण, दोस्ती तेरी मेरे लिए है खास, हर मुश्किल में बनती रहे विश्वास, यूं मुस्कुराती रहो हर बार, खुशियों से भरा रहे तुम्हारा संसार। और मुस्कुराइए, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। और मैसेज के साथ है प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ गणेश जी हैं, भैया थोड़ा सब्र रखिए, आपकी गाने की फरमाइश है, आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश को प्ले करेंगे, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है दिल्ली से, श्री राम जी हैं सासाराम टू दिल्ली से, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए प्ले कर दिए। और गाना सुनना है मेरी दुकान पे आना मेरी जान, तो एंजॉय करते हैं श्री राम जी की फरमाइश पे, उनके पसंद का गाना रेडियो रिमझिम पे।
1: जा मेरी जान,
2: अरे देखो, अरे देखो,
3: कादर खान,
4: अरे मैं तो तेरा प्रीतम हूँ।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे श्रीराम जी की फरमाइश से दिल्ली से, और बढ़ेंगे आगे। हाँ, मैसेज है लिखे हैं कि नमस्ते सोनी जी, कैसी हैं आप? और मुकिंदर कुमार कुशवाहा जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि दीवाने हैं तेरे नाम के। अरे हाँ, मुकेश खरवार जी है हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे लिखते हैं कि दीवाने हैं तेरे नाम के, इस बात से इकरार नहीं। दीवाने हैं तेरे नाम के, इस बात से इकरार नहीं, कैसे कहें कि तुमसे प्यार नहीं। कुछ तो कसूर है आपकी आंखों का, हम अकेले तो गुनहगार नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजन को। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और मैसेज है फिर से कि मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज अभी पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि हम वो लोग हैं जनाम जो कहीं भी जाने से पहले प्लानिंग करते हैं और उसके बाद नहीं जाते। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका सानिया सैफी जी हैं चखसना से, बहुत बहुत स्वागत सानिया जी आपका। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम से अर्जुन शर्मा जी की, और इनको सुनना है गाना अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। तो चलिए इंजॉय करते हैं अर्जुन शर्मा जी की फरमाइश पे, इनके पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो 90.4 FM पे।

आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से

0: ₹505 में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रूपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सानिया सफ़िया चखसना से, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं। और यहाँ आगे एक और मैसेज है, लिख रहे हैं, खुशबू बनके आपके पास बिखर जाएंगे, हवा बनकर आपके सांसों में समा जाएंगे, धड़कन बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे, जरा महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रहकर भी आपको पास नजर आएंगे। और मैसेज के साथ है मनीष राजाक जी, फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और लिखे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा? तो आपके गाने की फरमाइश जो है, हम सोमवार को पूरा किए थे, अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है, जैसे ही एक सप्ताह पूरा होता है हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है पिपरा नारायण से गणेश कुमार जी का, और इनको सुनना है गाना नीलकमल की आवाज़ में। तो चलिए प्ले कर दिया, आपकी गाने की फरमाइश, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे नीलकमल की आवाज़ में, फरमाइश करने वाले थे गणेश कुमार जी पिपरा नारायण से। और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली मैसेज की तरफ, और लिख रहे हैं कि सुनिए मैं, मेरा भी एक हफ्ता अगर पूरा हो गया हो तो मेरा भी गाना जो है प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बिल्कुल आपका एक सप्ताह हो गया है तो, और आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। और यहाँ प्रमोद चौधरी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि सब स्टेशन कोटवा बिजली घर कुशनगर से जुड़े हुए हैं, और हिंदी सॉन्ग सुनना है तेरे साये में सुकून पाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रमोद जी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है अहमद अली जी हैं सारे अवार्ड नंबर 1 से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अहमद जी, और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, सुनील कुमार जी हैं मक्का बिहार से, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए प्ले करते हैं इनकी वॉइस को, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: सोनी जी गुड आफ्टरनून, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आपके प्रोग्राम में आज पहली बार जुड़ा हूं, और आपकी एप्लीकेशन से भी पहली बार मैंने दस्तक दी है, और मुझे आज एक गाना सुनना है। फिल्म का नाम है तेजाब और गाने के बोल हैं कह दो कि तुम हो मेरी वरना। ये गाना मैं आपको सोनू गौतम को, प्रिंस पासवान जी हैं, मुक्तिनाथ जी हैं, एवं रिमझिम के जितने भी श्रोतागण हैं और भाई जी हैं, ये मेरा गाना उन सबको डेडिकेट रहेगा। धन्यवाद।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ अपना रुख करेंगे और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जो खुशी सबको देता है आखिर में वही रोता है, जो खुशी सबको देता है आखिर में वही रोता है, जो मिल ना सके उम्र भर प्यार उसी से होता है। नमस्कार सोनी जी, मैं भी जुड़ गया हूँ सो से। और अनिल जी है छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बनी रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं कि सोनी मैम अगर गीत बजाना है तो ख़त्म काटिएगा नहीं, पूरा बजाइएगा। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है पूरा प्ले करें और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है जय छपरा कुशीनगर से, तेरे साय से सुकून पाया। प्रमोद चौधरी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और कॉल वाले लोग नहीं दिख रहे हैं भैया, आप लोग कहाँ हैं, आप लोग भी आइए और अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं प्रमोद चौधरी जी की, इंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे तेरे साये में सुकून पाया, और गाने की फरमाइश करने वाले थे कुशीनगर जय छपरा कुशीनगर से प्रमोद चौधरी जी। और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम रामा जी का कॉल नहीं आया क्या अभी तक? जी हाँ, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आएगा जैसे ही, आप सुनते रहिए आपको पता चल जाएगा। और यहाँ विमल कुमारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि हाय मैम कैसी हैं? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए विमल जी कैसी हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है और कहाँ से। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, आप बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: मनीषा कुमारी सुंदरपट्टी से।
0: सुंदरपट्टी?
1: हाँ।
0: कहाँ पड़ता है ये सुंदरपट्टी मनीषा जी?
1: थावे के पास।
0: अच्छा अच्छा, तो आज कौन सा गाना सुनवा दे आपको?
1: कोई भी गाना सुनवा दीजिए, नीलकमल जी
0: का। नीलकमल जी का कोई भी गाना?
1: हाँ।
0: किस टाइप का चाहिए उनका गाना? सैड सॉन्ग? क्या नाम बताती तो ज़्यादा अच्छा होता।
1: अभी सुनवा दीजिए अपने पसंद
0: से। इतना मेहनत करके कॉल किए हैं मेरे पसंद का गाना सुनने के लिए?
1: हाँ मैम सुनवा दीजिए।
0: फिर भी कुछ बताइए कौन सा गाना सुनना है, क्योंकि खाली टाइम में तो मेरा ही पसंद चलता है।
1: हाँ कौन सा कोई सुनवा दीजिए।
0: कौन सा? हेलो
1: हेलो।
0: हाँ कौन सा गाना बोली है?
1: कोई सुनवा दीजिए मैम।
0: सैड सॉन्ग प्ले करें?
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए तो एंजॉय करिए नीलकमल की आवाज़ में अपने पसंद का गाना।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कॉल की।

तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हें सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, वो अलग बात है कि तुम हमें याद नहीं करते।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिन्नताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99 55 94 94 53
3: और 90 97 61 60 02।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, एमडी फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं सो में। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है आपका 98527 88291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और खाने की फरमाइश के साथ। और नाम पता मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारे लिसनर आखिर हमें सुन कहाँ से रहे हैं और जुड़ कहाँ से रहे हैं। या फिर उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 72 77 16 65 96 पे। और बढ़ेंगे आगे आज के अगली फरमाइश की तरफ और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज है, संजय यादव है दुबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैडम जी। और आगे बढ़ेंगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दर्द उखाड़ देने गीत बजा के। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय मैम गुड आफ्टरनून। अंसार आलम जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि मैडम जी ये सॉन्ग है सुना दीजिएगा। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ आगे बढ़ेंगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं हरिहरपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी और बने रहिए हमारे साथ में। और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है, तो बिल्कुल गाना सुनना है, गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। और एक यहाँ मैसेज है, वॉइस पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा, तो बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा। बुलेट गुप्ता जुड़े हुए हैं दतिवाना से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और फरमाइश है, तो आपकी फरमाइश जो है वो 12 बजे से पहले पहुंची हुई थी हमारे पास और अभी आपका मैसेज आ चुका है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पहुंची है प्ले करेंगे, बने रही हमारे साथ में। और यहाँ अगली फरमाइश जो है हम इंस्टाग्राम से प्ले करेंगे। और हमारे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज पहुँचा हुआ है गाने की फरमाइश, प्राप्ति शर्मा जुड़ी हुई है और इनको सुनना है गाना स्वाति मिश्रा की आवाज़ में। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश की थी प्राप्ति शर्मा जी, स्वाति मिश्रा की आवाज़ में काफ़ी प्यारा सा मधुर गाना। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि अच्छा गाना हुआ मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि खाना खा ली, बहुत टाइम हो गया बा। और मैसेज करने वाले हैं अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से, बिल्कुल अभी खाना खाए के तो समय हो ही गई बा, लेकिन हमारा समय 2:15 में हुई, आप सभी जाके खा लीजिए। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैम गुड आफ्टरनून, बजाज रोड लालगंज से एमडी नौशाद जी, एमडी सदाब जी जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभिनंदन टेलर के सभी लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बने रहिए साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं। और कॉल रिसीव करने से पहले एक कॉल कट चुका और फिर दूसरा कॉल आ चुका है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी मैं निसार अहमद सिवान से बोल रहा हूँ, लकड़ी दरगाह सिवान से।
0: जी क्या हाल चाल है निसार जी?
1: ठीक है, मोबाइल बंद करके इतना एक घंटा रखी हुई।
0: बंद करके नहीं रखे हुए थे, शायद नेटवर्क नहीं था।
1: नेटवर्क नहीं था, हम हुए 12:02 में शो चालू हुआ, उस टाइम से ट्राई करते करते करते
0: 12:05 में सिम चालू हुआ।
1: नहीं 12:01 स्टार्ट हुआ है।
0: अब नेटवर्क नहीं था, वो ध्यान नहीं था मुझे, मुझे लगा कॉल ही नहीं आ रहा है, इसलिए तो बीच में बोले भी।
1: बीच में बोली के कॉल वाले भाई कहाँ है सब लोग।
0: तो अगर बंद करके रखे होते तो थोड़ी बोलते हैं।
1: नेटवर्क नहीं था। इतना दिन छुट्टी में कहाँ चली गई, बहुत लंबा छुट्टी चली गई।
0: जी कुछ काम था पर्सनल, उसी को निपटा रहे थे।
1: नए आरजी आई हैं वो भारती जी, तो क्या वही रहेंगी, आप चले जाइएगा?
0: नहीं वो भी रहेंगे और हम भी हैं अभी।
1: आप मत जाइएगा।
0: नहीं ना, अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते।
1: फिलहाल गाना हम कुछ
0: जी बता दीजिए, गाना कौन सा सुनाया आज आपको?
1: गाना वही सुनना है हमको, महबूब से हमारे वाले सलाम कहना, यही गाना हमको सुनना
0: जी। और गाना सुनवाना भी है,
1: पहले तो आपको और भारती जी को और पृथ्वीराज लकड़ी दरगाह
0: जी,
1: इरफान भाई दुबई वाले, इशाद भाई वो थना वाले
0: जी,
1: और प्रमुख जी लुधियाना पंजाब वाले भाई, और दिनेश मिश्रा जी दिल्ली।
0: चलिए तो प्ले कर दिया गाना आपकी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल किया।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
10: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 1:33 हो चुकी है स्टूडियो घड़ी में, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो रंजन कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, और लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, मैं भी जुड़ गया हूँ रंजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और हमारा भी फरमाइश है प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले कर देंगे, और गाना सुनना है आप जो मेरे उम्मीद ना होते, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, थोड़ा इंतज़ार करिए हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ MD महमूद जी जुड़ चुके हैं केरला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है तो यहाँ आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है दिल्ली से धनेश मिश्रा जी को, और इनको सुनना है गाना बिना रुवले कबो सोई ना ऐसा रात नहीं खे। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: बरियार खैले बा लड़का के हालात बड़ी बुरा भइल बा भैया,

0: डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में एनएच 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क 99 393 65 930।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434403 62002434403।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ धनेश जी का कहना है कि अभी कहाँ, तो भैया आपका गाना चल चुका है और गाना पूरा बज के ख़त्म भी हो चुका है और अब आप नहीं सुनेंगे, आपकी गलती है। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अफवाहों का दौर चल रहा है, तुरंत जवाब देना सीखिए वरना किरदार पर वो दाग लग जाएंगे जो आपको कभी किए नहीं होंगे। जय हर। इसी मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप कुमार ठाकुर, मिर्जा पुटुमाली पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हाजिरी की बात है तो बिल्कुल लग चुकी है। और यहाँ धनेश जी की तरफ से तो मैसेज नहीं आया आपके भैया, सुन लिए उमाशंकर मिश्रा जी और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश थी जो उसके लिए मैसेज पहुंच गया। लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैडम जी राजू अली जुड़े हुए हैं लकड़ी दरगाह से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और गाना सुनना है अखिया में कौन जादू, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो।

शिव कुमार यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करने वाले हैं रंजन कुमार जी तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश है आप जो मेरे उम्मीद ना होते। तो चलिए रंजन जी की फरमाइश पे एंजॉय करते हैं इनके पसंद के गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजन 90.4 FM पे।

0: रेडियो टमटम 90.4 सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे आप, जो मेरे में इतना होते, और गाने की फरमाइश पहुंची थी हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ कुछ मैसेज है। जहूर आलम अंसारी हैं, कैसे बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि आप जो मेरे मीत ना होते, ये गाना फरमाइश करने वाले भाई को धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज रामा जी प्रसाद कहाँ रह गए हैं, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी। तो रामा जी प्रसाद कहाँ रह गए हैं, अपने घर ही होंगे और पता नहीं कहाँ हैं। फिलहाल यहाँ एक और मैसेज है, और सत्यम कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। श्रीपुर गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, तो बनी रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं और सुनते हैं कौन है, कहां से।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम रामा जी प्रसाद सागर आदि मार्ग से।
0: जी, क्या हाल चाल बा।
1: हाल चाल बाकी पसंद से दे भेज
0: करता। काफी लोग रहो इंतजार कर रहे थे।
1: सुपर फास्ट बस एगो खुलत बंजारी मोड से।
0: अच्छा,
1: ओकर टिकट करा ले, जीरो बैलेंस बा।
0: अच्छा,
1: हमरा के जितना लोग याद कर दो, सब भाई लोग, सभी आरजे लोग टिकट करा ले ठावे स्टेशन पर आने के लिए।
0: अच्छा,
1: हाँ, गाना सुना दी, बेटा ड्राइवर बाप खलासी जल्दी से पहुंचा दो ठावे स्टेशन पर।
0: बिल्कुल, और गाना सुनाए के बाद
1: जितना भाई लोग याद कर रहा, वो लोग सभी आते लोग सबको टिकट करा ले जीरो बैलेंस पे।
0: और गाड़ी के नंबरों बता दी।
1: गाड़ी का नंबर तो आप नहीं लिख ले।
0: अच्छा, नहीं लिख ले,
1: लेकिन खुलतिया सुपर फास्ट बस खुलतिया बंजारी मोड़ पे।
0: चलिए ठीक बात, प्ले कर दे ले बानी गाना।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करनी।

0: टिकट?
1: खाली टिकट में काटिएगा कि बैठेबो करिएगा?
0: अरे बैठिए ना माता जी, आपको कुछ बोल रहे हैं?
1: हम माता जी दिख रहे हैं आपको।
0: अरे तो भाभी जी समझिए ना।
2: अरे बाबा हमारा टिकट बता दो ना।
0: अरे दे रहे हैं ना, काहे हबला रहा है?
2: 2 रुपया कम है, रख लीजिए ना।
0: हाँ तो डीजलवा तोरा बाबूजी के पेट्रोल पंप से आएगा का?
1: आए बाबा, काहे इतना ऐठो हूँ।
0: हाँ तो अरे तो लाओ ना भाई।
3: ए पप्पा, ध्यान से भाड़ा वसूलिया, दिन भर के रोजी रोटी है।
0: बाग बुड़ बग, तू गाड़िया चलाओ ना, हम इधर सुन रहे हैं रे।
2: देखिए सीट बहुत छोटा रखे हैं आप, कितना दिक्कत हो रहा है बैठने में?
0: अरे तो थोड़ा एडजस्ट करो।
1: कितना एडजस्ट करें?

0: कहीं और मत पहुंचा दीजिएगा।
1: अरे जहाँ का भाड़ा दिया है वहीं तक न पहुँचाएंगे, मारे साले लपड़।
2: ए बाबा इतना काहे फड़कत हुआ।
1: अरे तो भाड़ा कौच रहे हैं, कला बीपी बढ़ाता है।
3: ठीक से बैठिए जी, धक्के।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ अपना रुख करेंगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं थैंक यू मैम, और रामा जी प्रसाद को, और गाना बजाने के लिए बज रहा है आपको थोड़ा पीछे हो गए हैं। हाँ हो गए हैं पीछे, कुछ काम में बिजी होंगे इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। और अखिल शर्मा है हरिहरपुर से, बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा, थोड़ा इंतज़ार करिए, बने रहिए हमारे साथ में। और आपका जो गाना का नाम है वो मुझे दिख नहीं रहा है, सही से समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा गाने की बात कर रहे हैं। तो गाने का नाम एक बार क्लियर लिख के भेजिए कि कौन सा गाना सुनना है। और यहाँ सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, लालगंज मिर्ज़ापुर से। और लिखते हैं कि ना जाने क्यों वो हमें इस कदर तन्हा छोड़ गए, ना जाने क्यों वो हमें इस कदर तन्हा छोड़ गए, जो कभी हर बात पर कहते थे कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। और लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार सोनी जी, राधे राधे प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सुजीत जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल्ली से भी फ्री का बस चलवाइए रामा जी प्रसाद। और मैसेज करने वाले हैं उमर शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, अपने पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा जी सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बिल्कुल बने रहिए साथ में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार प्रणाम जय माता दी। और श्री सागर दीवाना जुड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से गाने की फरमाइश के साथ, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, और विजेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं मोहम्मदपुर नीलामी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। और यह अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है, अंसार आलम जुड़े हुए हैं महुआन से, और इनको सुनना है गाना। और गाना है पतिया खड़की तो हमें समझिया आप ही आ गए। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है अलका याग्निक की आवाज़ में प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे अंसार आलम जी, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए। और मनीष पांडे भी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि काबिल गाना सुनना है सिल्फी राज की आवाज़ में, काल ब्याह गर्दा हुई सिल्फी राज की आवाज़ में गाना सुनना है। अखिल शर्मा जी हैं हरिहरपुर से, तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं। आवाज़ पहुँचे, अपने गाने को एंजॉय करिए। और यहाँ अमित कुमार जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिलहाल एंजॉय करते हैं सिर्फ राज की आवाज़ में अखिल शर्मा जी की फरमाइश पे, उनके पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: और इसी गाने के बाद बढ़ेंगे हम दोपहर समाचार के बाद, दोपहर समाचार के तरफ, तो कहीं मत जाइए। आप सभी सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद। और यहाँ गणेश मिश्रा जी बोल रहे हैं कि रामा जी प्रसाद थोड़ा देर से आए लेकिन जबरदस्त गाना लाए, और बाकी की जो फरमाइशें हैं वो फरमाइशें पूरा करेंगे। लेकिन दोपहर समाचार के बाद तो आप सब कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
11: Say in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
12: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
13: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
12: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
14: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
15: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
12: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंचाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
16: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
12: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
17: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
12: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
18: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
18: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
19: कब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
20: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
19: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
20: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
19: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
20: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
21: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
22: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
23: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
24: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
23: तो देर मत कीजिए,
24: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
25: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
26: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
23: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
24: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
27: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
23: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
26: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
23: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
24: कॉल करें 87894 18744।
28: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
29: रेडियो रिमझिम,
28: सुनो दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होई नू।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-53-69-015 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। सो से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 72-77-16-65-96 पे। और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम, आपके शो के बीच में 2-3 कॉल आ गया था इसलिए आपका 15-20 मिनट बाद चला और अपना गाना सुन लिया हूँ। चलिए अच्छी बात है कि आप अपना गाना सुन लिए हैं। और मैसेज करने वाले हैं धनीश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून वंस अगैन। प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय, और प्रोफाइल पे नाम दिखा रहा है रवि चौहान, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और अपना नाम पता जरूर मेंशन करिए कि आप कौन हैं और कहाँ से। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक और यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि रिमझिम दी से बात करना है, तो पहले आप बताइए कि आप हैं कौन, और प्रोफाइल पे नाम बिशन दिए हुए यादव दिखा रहा है, तो आप बताइए आप कौन हैं और कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक और यहाँ मैसेज है और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, और हमें भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिए। सोनू कुमार जुड़े हुए हैं गौसिया गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे लिखते हैं कि जब भी तेरे बिना रात होती है, जब भी तेरे बिना रात होती है, दीवारों से अक्सर बात होती है, सन्नाटा पूछता है हमारा हाल हमसे, और बस तेरे नाम से ही शुरुआत होती है। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, बनी रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भोजपुरी में गाना बहुत ही बढ़िया। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि थोड़ा जल्दी बजा दीजिएगा बिल्कुल, और सत्येंद्र कुमार गुप्ता हैं, लेकिन गाना सुनना कौन सा है ज़रूर बताइए, तब तो हम आपके गाने की फरमाइश जो है जल्दी बजा देंगे। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और यहाँ एक और मैसेज है, और नतिवाना से जुड़े हुए हैं बुलेट गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे यहाँ आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है राजू अली जुड़े हुए हैं लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, और उनका सुनना है गाना पवन सिंह की आवाज़ में। तो चलिए इंजॉय करते हैं राजू अली जी की फरमाइश पे पवन सिंह की आवाज़ में, अखिया में कौन जादू, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।
1: सहज सवाल है, तू जब ताके लो तो तुझसे मोहब्बत हो जाला।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, राजू अली जी की फरमाइश थी और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू मेरा गाना सुनाने के लिए और मैं गाना सुन लिया हूँ, कब से वेट कर रहा था। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो सभी को नमस्कार, और अजय सक्सेना जुड़ चुके हैं यूपी कुशीनगर से और लिख रहे हैं कि हमें भी गाना सुनना है कल्लू जी की आवाज़ में। और अली के दोस्त है राजू अफसाना जी जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और अजय सक्सेना जी, मैं आपको बता दूं कि आपके जो गाने की फरमाइश है वो हम रेडियो पे प्ले नहीं कर सकते, और आपको भोजपुरी गाना अगर सुनना है तो अच्छे गाने की फरमाइश करिए। जो गाना सुन के किसी को कोई आपत्ति नहीं हो फिर हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे। और भोजपुरी गाना बजाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी गाना सुनवा देंगे, तो काफ़ी सारे अच्छे गाने हैं उसमें से आप कोई भी एक गाना चुन के भेजिए, हम ज़रूर प्ले करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि फूल है गुलाब का सुगंध लेते रहिए, मन है समुंदर में नहाते रहिए, प्रेम है रेडियो रिमझिम से हमेशा मुस्कुराते रहिए, नमस्ते। और कागज़ है गुलाब का मोहब्बत से प्यार का, कागज़ है गुलाब का मोहब्बत है प्यार का, दिल तो उसी पे मचलता है जो रेडियो रिमझिम पे भेजता है नाम अपना। और गाना जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, गाने की फरमाइश के साथ है सावन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिख रहे हैं कि सभी श्रोताओं के साथ जुड़ गया हूँ, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है इंस्टाग्राम पे, और कल से ही ये वेट कर रहे हैं अपने गाने की फरमाइश के लिए और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अरशाद जी, जुड़े हुए हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और फरमाइश है तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दी है, दीवानी मैं तेरी दीवानी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765665750।
3: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 94.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में 3:04 हो चुकी है स्टूडियो घड़ी में और मैं 4 तक आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइश के साथ हूँ। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और यहाँ मैसेज है लिखने कि पप्पू अपनी पत्नी से, अच्छा ये बताओ विदाई के समय तुम लड़कियाँ इतनी रोती क्यों हो? पत्नी: पागल, अगर तुझे पता चले कि अपने घर से दूर ले जाकर कोई तुम्हें बर्तन मंजवाए तो तू क्या नाचेगा? बात तो बिल्कुल सही है। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका सोनू कुमार जी, गौसिया गोपालगंज से हैं और गाने की फरमाइश है, तो थोड़ा इंतजार करिए, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ एक और मैसेज है, देख रहे हैं रेडियो रिमझिम के सभी परिवार को मेरा नमस्कार और जख्मी दिल का कुछ हाल सुनाना चाहता हूँ। लिख रहे हैं कि उदासी में चेहरे की शान चली जाती है, उदासी में चेहरे की शान चली जाती है, टूटे हुए दिल की पहचान चली जाती है और एक दिन हम तेरी ज़िंदगी से इतनी दूर चले जाएंगे मेरी जान कि किसी हादसे में किसी की जान चली जाती है। हर गाने का बोल है, तनी जा जा ये बदरा तू चली जा, पवन सिंह की आवाज़ में। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बहुत बहुत स्वागत, आपका नाम ज़रूर बताइए, आप कौन हैं और कहाँ से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हस्ती मिट जाती है आशिक बनाने में, हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होती है अपनों को समझाने में, एक पल में किसी को भुला देना ज़िंदगी लग जाती है किसी को अपना बनाने में। और मैसेज के साथ है धनीश विशा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लिख रहे हैं, हेलो मैडम जी, महमूद अंसारी बिहार से, और मुझे भी गाना सुनना है, मेहंदी है मेहंदी। और बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँची हुई है वो है देवहाता से, बुलेट गुप्ता जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना, वॉइस पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
7: हाय मैम, मैं बुलेट गुप्ता धतिंगना, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार, आउट ऑफ स्टेट पुणे महाराष्ट्र, और गाना सुनना चाहते हैं जानवर फिल्म का अंगूरी अंगूरी। आपको सुनवाना चाहते हैं आपके सभी टीम को, रेडियो रिमन सुनने वाले सभी दोस्तों के साथ।

0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी
1: छम छम के अंगूरी बदन
0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे बुलेट गुप्ता जी की फरमाइश थी दीवाना से, और इनकी तरफ से मैसेज है लिख रहे हैं, थैंक यू। गाना बजाने के लिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, जो भी आदमी असली गाने की फरमाइश कर रहे हैं उनका मैसेज को प्लीज़ मत पढ़िए। और बिल्कुल आगे से यही करना है कि अब जिनके भी गाने की फरमाइश आएगी सीधा उनका मैसेज ही साइड करना है, क्योंकि खुद जब आदमी नहीं समझेगा तो कितना समझाया जाए, बार बार एक ही बात बोल बोल के बोलने से भी और सामने वाले को समझ में नहीं आया तो ये तो अच्छा बात नहीं है। और उमाशंकर मिश्रा हैं दिल्ली से, बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दूसरा गाना भेज दिए खेसारी लाल की आवाज़ में। बिल्कुल दूसरा गाना आया है आपका, लेकिन वेट करिए आपकी बारी आएगी, तो कोशिश है आपके गाने की जो फरमाइश है प्ले करें। और आगे बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अंगूरी बदन वेरी नाइस सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक जी फालजी नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे लिखते हैं कि घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, सारी गली पीछे निकली, इकरार करते थे वो हमारी मोहब्बत है, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से, और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब में निकली। क्या बात है मनीष जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि पप्पू की वाइफ रोमांटिक मूड में थी, पूरे बैंड

0: और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि और गाना सुनवाइए, मोहम्मद अली मोहम्मद जी जुड़े हुए हैं, भाई को थोड़ा जल्दी सुनवाइए। बिल्कुल, अगली फरमाइश आप ही की है। और अगली फरमाइश यहाँ हम लेंगे पहले कॉल के माध्यम से, फिर कॉल के बाद अगली फरमाइश जो है आपका प्ले करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और कॉल पहुँच चुका है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: पूजा देवी बरारी से।
0: जी, कैसे हैं पूजा जी?
1: ठीक बनी अपन सहे।
0: हम भी बढ़िया बने, क्या होत रहे।
1: गाना सुनो दंसा कहाँ छोड़ के भाग जाता नहीं।
0: कहीं नहीं की भागत जी, कहाँ छोड़ के जाम रोवा लोग के। ना ना ऐसा ना कहीं, कुछ काम रहा
1: बस।
0: बिल्कुल हो गए, अपन बताई राव रोहल की ना अभी। चलिए तो गाना कौन सुनवा दी आज रुआ के? अच्छा, और गाना सुनाओ कब? गाना सुनाओ के बाके हो के।
1: हाँ, सब तो सुनते बने लो।
0: सब जन तो सुनते बने लो। चलिए तो गाना प्ले कर दे लो बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के लिए।
1: ठीक है।
0: ठीक है।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

90.4 आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ पढ़ेंगे। मैसेज है, लिख रहे हैं कि ऐप सही नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है और रुक रुक जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर पे। उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से, तो एक बार बंद करके फिर से चालू करिए, हो सकता है सही हो जाए। और यहाँ निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी जिला से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिखे हैं कि पिपरवा के तरवा वाला गाना नीमन बा, ये गाना हमारा प्लेलिस्ट के पहले से अच्छा प्लेलिस्ट में पहले से शामिल बा। और मैसेज करने वाले प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, बढ़िया है और ये गाना मेरे भी प्लेलिस्ट में है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सॉन्ग अच्छा चल रहा बा। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका सचिन कुशवाहा पुणे से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है महमूद अंसारी, जुड़े हुए हैं बिहार से और इनका सुनना है गाना मेहंदी, हाँ मेहंदी तो रंग लाती है। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिया, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, हम सभी गाने की फरमाइश करने वाले थे अली मोहम्मद जी, और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि साले को सुनकर अच्छा लगा मैडम जी। और चलिए अच्छी बात है, गाना सुने आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं निजामुद्दीन जी सीतामढ़ी से, और इनको गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रंजन को। और अगली फरमाइश हमारे पास यहाँ पहुँचा हुआ है, और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, सोनू कुमार जी हैं गौसिया से, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए प्ले कर दिया आपके गाने की फरमाइश को, इंजॉय करिए अपने गाने को, और सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM को। और गाना है वो दिल तोड़ के हंसती है, तो इंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजन 90.4।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं धर्मेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं समस्तीपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। भी लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है और फरमाइश के साथ है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है क्योंकि समय बहुत कम है और आपकी फरमाइश जो काफ़ी देर बाद पहुंचा हुआ है तो कोशिश है कि हम आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दें। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को और आगे बढ़ेंगे। यहाँ अमित कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं समस्तीपुर बिहार से और गाना सुनना चाहते हैं अगर तुम साथ हो, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफा है मेरी याद करोगी, नाइस सॉन्ग मैडम जी, रोहित जी हैं देहरादून से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक और यहाँ आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि उलझे शाम को पाने की जिद ना करो, उलझे शाम को पाने की जिद ना करो, जो ना हो अपना उसे अपनाने की जिद ना करो, इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं इसलिए साहिल पर घर बनाने की जिद ना करो। और इस मैसेज के साथ है मनीष रजाक जी फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और आज की अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है काफ़ी देर से इंतजार में है और लिख रहे हैं कि सभी परिवारों को मेरा नमस्कार बोलिएगा रेडियो रिमझिम के, बिल्कुल बोल दिया। और गाना सुनना चाहते हैं पवन सिंह की आवाज़ में, तनी जा जाए ये बदरा तू चली जा, तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर दी है। अपना नाम ज़रूर मेंशन करिए कि आप कौन हैं, फिलहाल एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी बेमिसाल म्यूजिक स्टूडियो से और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे। हाँ, एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि कितना चिट्ठी, कितना मैसेज, कितना फ़ोन पे बात करी गाने की फरमाइश है। तो बिल्कुल अगली फरमाइश आपकी प्ले कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो पहले कॉल के माध्यम से फरमाइश ले लें, फिर आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और नई मंसारी जुड़े हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, थोड़ा इंतज़ार करिए और आपका भी इंतज़ार ख़त्म होगा। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ, बात करते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: मैं निर्मला कुमारी जादूपुर से।
0: जी, कैसी हैं निर्मला जी?
1: अच्छी हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
1: कॉल ले रही
0: थी। जी, कॉल तो लग गया, तो गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: मैम अक्षरा सिंह के ना कोई सॉन्ग सुना दीजिए।
0: अक्षरा सिंह का कोई भी सॉन्ग? और सुनवाना भी है? तो प्ले करेगा ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमे कॉल के।

ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।

0: अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। गणेश कुमार है पिपरा नारायण से। तो गणेश जी, आपका मैसेज आया था 12:17 पे और 12:44 में हम आपका गाना प्ले कर दिया। अब आप नहीं सुन पाए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। और इसके साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दी मेरा दूसरा गाना बजा दीजिए। तो फिलहाल बने रहिए साथ में और समय रहता है हम आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और आप सभी से मैं बोलती हूँ कि एक ही बार में गाने जो है सही गाने की फरमाइश किया करिए, तो आप लोग को सुनाई नहीं देता है और बाद में बोलते हैं कि चेंज कर दिए हैं। तो अभी आपसे पहले भी काफ़ी सारे गाने की फरमाइश है, तो चलिए अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं। निकला गया रेशम के जालीदार ओढ़नी और गाने की फरमाइश के साथ है धर्मेंद्र चौधरी और इनको सुनना है गाना समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए। एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे धर्मेंद्र चौधरी जी के और लिख रहे हैं कि दिल खुश हो गया मैडम जी गाना सुन करके। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि निकला गेला रेशम के जलीदार ओढ़नी नाइस सॉन्ग मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं शिवसागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम आप कितना बोल रही हैं, गर्मी है पानी पीते रहिए। जी हाँ बिल्कुल, बीच बीच में मैं पानी पी रही हूँ, अगर नहीं पीऊँगी तो फिर इतना गर्मी में मेरा क्या होगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है एक और, लिख रहे हैं कि वो ये क्या आपकी आवाज़ है सच यू आर द बेस्ट आरजे। और मैसेज करने वाले हैं मुंबई से जुड़े हुए हैं और नाम मेंशन नहीं है, तो भैया नाम ज़रूर बताइए आप कौन। और दीपक यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है निजामुद्दीन जी हैं सीतामढ़ी जिला से, और इनका सुनना है गाना किसी बेवफा से। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दी है, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे निजामुद्दीन जी सीतामढ़ी जिला से, और इन्होंने गाना सुन लिया। लिख रहे हैं, बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि किसी बेवफा से मोहब्बत ना करना, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक जी, और आगे लिखते हैं कि इश्क मोहब्बत तो सब करते हैं, इश्क मोहब्बत तो सब करते हैं, गम जुदाई से सब डरते हैं, हम तो ना इश्क करते हैं ना ही मोहब्बत, हम तो बस आपकी एक मुस्कुराहट पाने के लिए तरसते हैं। क्या बात है। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सॉन्ग प्ले कर दीजिए। अमित कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं समस्तीपुर बिहार से, अगर तुम साथ हो तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले कर देते, लेकिन अभी यहाँ समय बहुत कम है तो माफ़ करिएगा। कल जुड़िएगा इस शो में, पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे। शो में जुड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गर्मी बहुत है मैम, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, मैं भी शो में जुड़ गया हूँ। अपने घर गाँव से हाथा सिवान से जुड़े हुए हैं, और न्यू फैशन टेलर नागपुर महाराष्ट्र के से जुड़ते थे पहले, फिलहाल अपने गांव आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बाय बाय गुड आफ्टरनून, अलविदा सोनी मैडम जी, फिर मिलते हैं। और उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से, जी हाँ फिर मिलेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि शिव सागर दीवाना भाई को हमारा राम राम बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, वो है कॉल के माध्यम से। और यह क्या बात है, कॉल रिसीव करते ही कॉल कट गया, कॉल रिसीव हो करके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज की अगली फरमाइश प्ले करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर तुम साथ हो। अमित कुमार शर्मा जी हैं, तो चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को। और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए आज की इस शो से मुझे जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क 99 393 65 930।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम
7: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
4: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
6: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
9: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आदमी जब जन्म लेला तो ओकर बरही होला, अमर जाला तो ओकर लोग तेरे ही कर देला। द्वार पर बाबूजी कपड़ा बिना तरसत तारे, दवाई बिना मर तारे, खाना तिकव तारे जब बेटा नाथ पतो दिहस। बाकी मर गईला के बाद लोग नौ गो नखरा करेला,

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99 55 94 94 53
6: और 90 97 61 60 02।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: चल जाए मायके तो खेती ही खाएंगे।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870330।

0: प्रूव्ड शानदार डिजाइन और असली झूलने की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065.
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक

0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास दसवीं तक कंप्यूटर एजुकेशन बस फैसिलिटी रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज कॉल अस 9939721308।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434403।
9: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 9097160602।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: क्या गाना सुनना है?
2: जी, कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना सुनना है आरती में होकर सवाल कर लीजिए, मैं तो अपनी साजन के द्वार कर लीजिए।
2: जी
1: हाँ, खलनायक फिल्म का गाना है।
2: ओके,
1: यही गाना सुनना है।
2: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: सभी आदमी को सुना, सभी आदमी सुनेगा ये गाना को।
2: अच्छा, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम, राधे राधे।
1: राधे राधे, क्या नाम है आपका?
0: सुरेश कुशवाहा बोल रहे हैं।
1: और कहाँ से?
0: श्यामपुर से बोल रहे हैं
1: जी। क्या हाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया, अपना सुनाइए।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो ऐसे बैठे हैं खाना वाना खाकर। आपका खाना वाना हो गया है?
1: जी। फिर बताए क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश जादूगर फिल्म का गाना सुनवा।
1: कौन सा सॉन्ग जी? बताए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
0: कोई भी
1: जादूगर मूवी का कोई भी सॉन्ग
0: जी।
1: और ये गाना आप

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: वालेकुम
12: अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: मैं अहमद अली, सरयाबाद नंबर 1 से।
12: जी कैसे हैं आप?
13: हम तो अच्छा है, आप कैसे हैं मैम?
12: मैं बढ़िया हूँ।
13: तबीयत अच्छा है ना?
12: जी तबीयत मेरा ठीक है, आप अपना बताएं।
13: हम लोग का भी अच्छा है।
12: फिर क्या हो रहा है अभी?
13: ड्यूटी में है मैम, पेंटिंग का काम करते हैं।
12: जी
13: ड्यूटी में है।
12: फिर बताएं गाना?
13: आज गाना आज मेरे को सुनना है कसूर फिल्म का, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, जिंदगी बन गए वो तुम, है ना?
12: जी
13: हाँ, वही गाना सुनना है और सुनाना है सबसे पहले आपको।
12: जी
13: और मेरी वाइफ है अख्तरी, उसको, राघव जी को, कमरान जी को, दिलीप भाई को और शबनम को, रानी को और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, और आपको भी आए।
12: जी
13: हम लोग का भी दिल नहीं लगता है।
12: जी चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे।
13: ओके मैम,
12: रेडियो रिमझिम कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
13: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: हम सबसे जल्दी आगे चल रहे,
1: क्या हाल है आपका?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ। क्या
0: मैं मेरे को अभी तो आपसे बात हो रही है। जी मैम, तो मुझे तो गाना सुनना है।
1: जी बता दे कौन सा सॉन्ग सुनना है।
0: काटिए गाना ही गाना है, गाना का नाम है इश्क ना इश्क से गाना है ना।
1: जी हाँ,
0: वही वाला गाना सुनना हो पूरा सुनाइएगा मैम।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको।
1: जी
0: अभी जितने भी सुनने वाला है सभी को।
1: ओके चलिए फिर, ठीक है, सुनते रहे सबके साथ रेडियो में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: ठीक है, धन्यवाद।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम में।
13: नमस्कार।
12: नमस्ते
13: जी, क्या हाल चल रहा है, बोलिए।
12: मेरा हाल बढ़िया है, आप अपना बताएं।
13: बहुत अच्छा है हमारा। और हर्ष भाई,
12: क्या नाम है आपका?
13: तो कुमार, पोटवा से।
12: अच्छा जी, क्या हो रहा है अभी?
13: अभी क्या हो रहा है, तो मौसम आपको पता है, जब कोई बाहर निकलने देते हैं।
12: जी, मौसम तो अभी बहुत गर्म है,
13: बहुत बहुत ज्यादा ऐसे गर्म पड़ रहा है।
12: जी,
13: बैठे घर में ऐसे पर। अभी सब सुनाइए।
12: हाँ, सब बढ़िया है।
13: अच्छा ठीक है, हमको गाना सुना दीजिएगा। आप वही गाना जो उस दिन बोले थे, प्यासे को पानी पिलाया नहीं। अच्छा जी,
12: यही गाना सुनना है आपको?
13: हाँ हाँ, यही सुनेगा।
12: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कदर करना हो वक्त रहते ही कर लो, स्थिति की कदर करना हो वक्त रहते ही कर लो, सूखे पेड़ में पानी डालने से हरा की उम्मीद रखना बेकार है। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैं कमरा मसीद विलेज पकड़ी सुल्तान।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
0: मेरा तो हाल ठीक है, अपना सुनाइए आप कैसी?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: नाश्ता हो गया आपका?
1: जी हाँ, मेरा हो गया। और आपका?
0: हाँ मेरा भी हो गया। मुझे भी गर्मी का मौसम ज्यादा है। गर्मी?
1: जी गर्मी तो बहुत ज्यादा है और गर्मी तो बढ़ती जा रही है।
0: हाँ अभी तो और बढ़ेगा।
1: जी
0: तो वही चल रहा है, जून जुलाई अगस्त पूरा गर्मी, इसमें तो बच के रहना ही ठीक है।
1: जी गर्मी में बच के रहिए।
0: अब धूप में ज्यादा घूमना अच्छा नहीं है, नींबू पानी पीना चाहिए इसमें। तो आपका नाम क्या हुआ?
1: मेरा नाम भारती है।
0: अच्छा हाँ हाँ, तो बिल्कुल चला भाई, कोई भारती नाम के आई है।
1: हाँ।
0: और सब बढ़िया है?
1: जी मेरा बढ़िया है। फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: फिल्म का नाम है कुली नंबर वन।
1: जी
0: फिल्म का नाम कुली नंबर, सॉन्ग है जेठ जेठ दुपहरी में पाँव जले।
1: जी
0: हाँ यही सॉन्ग में है, डेडिकेट है सबसे पहले आपको।
1: जी
0: और आयशा अफ्तारी, अहमद अली, शाहजहाँ, सबीना, सब्बा सिद्दीकी, समीर आलम, गुलाम हुसैन, अजाद अंसारी सऊदी, अजीर आलम अंसारी, रानी हरखवा, भास्कर बरजू, मुखल सोनी, रानी हरखवा, सबनम सिद्दीकी और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुन, देवेंद्र भाई, उमा शंकर भाई, हेना हाजरा, सबको सुनाएगा। नमस्कार।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो।
15: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर MP से।
14: जी कैसे हैं आप?
15: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे रेडियो रिंगजिन सुनते हुए मैम, फोन लगा रहे थे, फोन भी लग गया मैम।
14: अभी तो फोन लग गया ना?
15: जी जी जी जी मैम, फोन तो बहुत जल्दी लग गया मैम।
14: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
15: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म हीरो और गाने से बोला तू मेरी जानू, यही हम सुनवाएंगे। कितने रेडियो और इंजिन दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
14: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे।
15: धन्यवाद
14: पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: थैंक यू।
0: क्या नाम है आपका?
1: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: बस बढ़िया, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है?
1: अभी काम पे हैं।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: हम एज ए केमिस्ट मेडिकल हॉल पे काम करते हैं।
0: अच्छा जी, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है कुली नंबर वन मूवी से, हुस्न है सुहाना। और
0: आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: आपको और सारे लिसनर्स को।
0: जी बिल्कुल।
1: और रेडियो रंजन से इतना गहरा जुड़ाव ही है। चलिए, आपसे भी बात करके अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि ये सिलसिला ठीक ठाक ही चलेगा।
0: जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी मेरी।
1: जी जी,
0: ओके।
1: आप भारती जी है ना? नाम यही ना? हाँ, चलिए तब ठीक है, याद है अभी।
0: ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, नमस्ते।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: बाल भी सुंदर तो
11: जी, कैसे हैं आप?
12: ठीक है, अपन बताइए।
11: मेरा भी ठीक है।
12: जाना नहीं है कोको कोला वाला, बहुत गर्मी है।
11: जी गर्मी तो है। कौन सा गाना बोले, एक बार और बता दे।
12: कोको कोला वाला नहीं है,
11: भोजपुरी सॉन्ग है।
12: जी जी,
11: ओके।
12: अमन आशीष कौन राव अदी दंगराज,
11: इन सबको सुनाना है आपको गाना।
12: जी जी
11: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
12: नमस्कार।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मेरा नाम तो है गोपाल रॉय, उससे डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी का नाम सुना है आप? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का
1: जी जी।
0: सिलीगुड़ी के जाने के टाइम में सिलीगुड़ी से और पीछे में एक जगह रास्ता है, वो जो विधाननगर बोलते हैं उसको। इस्लामपुर का नाम सुना है ना
1: जी?
0: इस्लामपुर के बाद एक घंटा का रास्ता है, विधाननगर बोलते हैं। यहाँ पर जो मेरा हम लोग के यहाँ पर अनारस मतलब पाइनएप्पल फेमस है।
1: अच्छा,
0: हाँ वही से मैं बात कर रही हूँ, विधाननगर से
1: जी। फिर बताएं कैसे हैं आप?
0: हाँ हम तो अच्छे हैं, बराबरी फोन करके अच्छी रहती हूँ, इसलिए तो आप लोगों का प्रोग्राम मैं सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: आपका नाम क्या बोला?
1: भारती। फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: मेरा तो फरमाइश है, मैं तो पुराना फिल्म ही सुनती हूँ गाना
1: जी।
0: आज पुराना नहीं सुनूंगी, आज से आप नए आदमी से बात करें इसलिए नया फिल्म के गाना सुन रहे हो। नया मतलब कैसे नया बोलिए, तो जैसे 90s का जो फिल्म है ना वो उस तरह का फिल्म का, जैसे सदन फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: बताएं कौन सा सॉन्ग?
0: बहुत ही प्यार करते हैं तुझे के गाने से
1: जी, बहुत प्यार करते हैं।
0: जो इस अनुराधा पटेल का आवाज में जो गाना है ना
1: जी जी,
0: और भी एस पी बालासुब्रमण्यम की भी है, सुना दीजिएगा।
1: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
0: आप रेडियो जी को एक और आपको भी सभी को डेडिकेट करती हूँ।
1: ओके
0: अच्छा, ये प्रोग्राम के वही दिन में 5 बजे से शाम में?
1: शाम में 5 से 7 बजता है और सुबह 9 से 11।
0: ओ अच्छा अच्छा, वही टाइम है ना
1: जी,
0: टाइम है तो गाना सुना दीजिएगा।
1: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके ओके, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99393965930।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डिरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो,
12: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: सोनी मैडम है क्या?
12: जी नहीं।
13: वही तो देख रहे हैं, सोनी मैडम ना लग रही है। आपका क्या नाम हुआ?
12: मेरा नाम भारती है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका?
13: मेरा नाम है रविकांत कुमार, झारखंड, कोडरमा जिला।
12: जी,
13: सतगावा, अम्माबाद।
12: फिर कैसे हैं आप?
13: ठीक है, अपना सुनाइए, कैसे हैं?
12: मैं बढ़िया हूँ।
13: मेरा फरमाश गाना चाहिए, भोजपुरिया।
12: जी बताएं, क्या सुनना है, कौन सा सॉन्ग?
13: ऐसे तो राजा बाबू का है, ये फिल्म में हो गया है
12: जी।
13: राजा वो सरकारी लोग खटिया, ठीक है राजा बाबू का है।
12: सॉन्ग कौन सा है?
13: सरकारी लोग खटिया ज्यादा लगे।
12: अच्छा जी जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
13: बस आप सुनिएगा, हम सुनेंगे। और माल जो मेरी बेची है
12: जी,
13: और लोग।
12: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: कैसे हैं भारती जी?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आज छुट्टी में हूँ
0: जी। अपना नाम बता दें।
1: मनीष कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
0: जी जी।
1: और सब कैसे हैं?
0: और सब बढ़िया हैं।
1: और क्या हो रहा है?
0: नहीं, बस आपके साथ बातें हो रही हैं।
1: अच्छा जी
0: जी, बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमारा फरमाइश है, एक करीना पांडे और सविता पांडे का जुगल है गाना
0: जी,
1: प्रेम चिन्ह लाना की कौन जाता।
0: अच्छा हाँ,
1: प्रेम चिन्ह लाना आदमी की कौन जाता, ऐसे कुछ गाना है ना।
0: हाँ,
1: वही सुना देना।
0: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: सारे आपका टीम को और जितने दिन जिन परिवार है सबको।
0: ओके, फिर गाना
1: कल मैम चलेगा ना?
0: जी ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगकिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सीवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है।

0: आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone gende bajte hai to kehte hai
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंधिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: वालेकुम
6: अस्सलाम। अच्छा जी, कैसी हैं
7: आप?
6: मेरा भी ठीक है। फिर बताए। हाँ, मेरा हो गया। आपने कर लिया?
7: ना, रोजा वाली।
6: अच्छा, हाँ
7: कल बकरीद है।
6: हाँ हाँ,
7: गाना सुना दीजिए, हिंदी गाना है। आप आने की खुशी में दम निकलना जाए।
6: जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
7: आपको सुनाएंगे और जितना लोग सभी को।
6: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंजिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। जी नमस्कार।
0: हाँ जी, संजीत बोल रहे हैं लुधियाना पंजाब से।
1: जी कैसे हैं?
0: ठीक है जी, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ। क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो काम हो रहा है फैक्ट्री में।
1: अच्छा, बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: हीरंगा का रब ने बनाया जो मुझे काफी लिए गाना।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: आपको सभी इंजन टीम के सभी श्रोता को सुनाएंगे।
1: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंगीन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: इक्कीस वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास दसवीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
2: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रेवरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शोटे वर्जा भार। रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे की कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथे राव दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।
1: छोटी बिरजा भार के कहानी तीसरी से अब दूसरा भाग में दूसरा कैसेट में आप सुनी यह कहानी के राजा के खड़मल बहुत प्रयास कैले वाणन लेकिन जोगी बिरजा भार नहीं खन रहल चाहत। लास्ट में अब बिरजा भार का कहत रहे अपने मामा से
2: का कहत रहे
1: आरे

0: योगी महाराज रउआ ना मानो
1: ना हमरा के जल्दी से भिक्षा दे दी कि हम दूसर द्वार देखी।
0: रउआ भिक्षा लेके चलिए जाए।
1: हाँ।
0: दूसरे द्वार पर जाए।
1: हाँ।
0: ठीक बा, कोनो बात नहीं है, हम रउआ के भिक्षा मंगा देता नहीं।
1: ले
0: देखा सन करो।
2: हाँ।
0: जा

0: ऐसन बात मत कही, हम रौरा हाथ से भिक्षा ले, सिपाही के हाथ से भिक्षा ना ले सकी।
1: वह तो हम कहनी है, वो हमरा के लिए आके दी है। लेकिन जोगी महाराज, हमरा लगे हाथ है ये नहीं खे, हम कौन तरह उठा के रउआ के भिक्षा दे महाराज।

0: छ महीना पर ना तो नौ महीना पर।
1: अरे बाबा बाबा
2: का
1: हमरा से बिछाना ले,
2: तारा हाथ से हम बिछाना ले।
1: अच्छा
0: तू हमरा के भिक्षा दो, हम देता नहीं। जोगी बाबा
1: ली राजा ली भिक्षा ली
0: है ले, है भिक्षा ले ले
2: दे। आ बोजू राजा पहचानत नहीं खान, लेकिन जोगी बीजा भार तो पहचान गेल बहन। आ भिक्षा ले करके आ का कहता रे अपने मामा से,
0: का कहता रे?
2: अरे आखिर तोहरो फूटी हो

0: अब देखी वहां से बिरजा भार चल गए। अब मामा अपन क्रा क्रा कर तड़े
1: भगवान।
0: अब यहाँ
1: का करी
0: उनके मामा
1: सिपाही
0: कौन तरह से
1: जल्दी हमके घर के अंदर ले चला।
0: बिरजा भार की आदमी पागल हो जाता है। का कहत रहे कौन तरह से का कहत रहे अपने भगिना के कारण का कहत रहे।
2: अरे बड़ा दुख दहनी है भगी।

0: गुरु के बुलावतन। हे गुरु
1: काए चेला,
0: अब तो हम अपने मामा से भिक्षा ले भनी, अब तू बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जाई।
1: इतने में मैं परेशान हो गई, अपने मामा से भिक्षा ले ले ले बड़ा।
0: हाँ
1: अब तू एजा से फेर लौट के चल जा अपने मामी लोनी के लगे। अपने मामी लोनी से जब भिक्षा ले लेब तबे तहार जोग पूरा होई।
0: का फिर हमरा अपने मामी लो के लग जाए पड़ी?
1: हाँ।
0: नहीं गुरु, तू बहुत परेशान हमके करता। अरे वही जो हम अपने मामा के दुआरी गई रही, अगर ये बतिया पहले कहल रही तो जाके हम अपने मामियों से भिक्षा ले रहती। अब फिर जाए के पड़ी।
1: तू तनिको घबरा मत, जल्दी जाओ जा से भिक्षा लेके जेब। अब तहार बहुत दूर रास्ता बाटे, अब तू हारे लगल का।
0: अच्छा हे गुरु, अब हम जातनी अपने मामी लो के लगे। अब वहाँ से बिरजा भार, अब अपने मामी लोग के दुआरी पर जाए के तैयारी करते हैं। अरे लगौली ताहर माई हो, अरे लगौली ताहर माई, अरे सगरो झग

0: देखी अब वहाँ जा करके अपने मामी के फुलवारी में यासन लगा दल बड़े अब इन्हें से सखी ले चलता लो
1: रे हे दीदी
2: काए दीदी
1: ए हौ के नबी ए दीदी सुन तड़ू हो
2: कहा बड़ू कहा
1: अरे बाप हो बाप
2: अरे चल के फुलवारी में हो
1: चल के आज हमार विचार कइले बा कि आज चली हम तनी सा फुलवारी में तनी घूम के चल आई
0: अरे चल सखी चल सखी अरे बाबा फुलवरिया अरे से फुलवा

0: ना ते बेनिया के फेर में बड़े आ हमारी विचार बा कि ना बेनिया मिली तो सुपो आके हमरे देहिया पर डोला दे तब हमार काम ठीक हो जाए। अरे
1: अरे हो देव तर लोग ना हो कैसन बढ़िया जोगी आके हो आसन लगोले बड़े हो
2: निरंजन लाख निरंजन।
0: अरे बाप रे बाप ये भगवान जी
1: चलो करे
0: ऐसन सुनर हम जोगी नहीं देख रहे ए दीदी
1: का है
0: दीदी रे हो देख तरु कैसन सुनर जोगी बा बाप रे बाप ओकर मुहवा के रोशनिया हमरा करे जो मनी ढुकता हो
1: कैसे आसन लगा
0: पहले पहले ए जोगिया के पहले ध्यान तुगड़े दे
1: ध्यान तो

0: चला किरे नंजन
1: आकि तार भूभुन फूटी
2: यही पपला परसार रली हो
1: तार कंठी तुर के छोड़ भाई कमंडल मंडल सजी नोच नाच के भीग
2: अरे जलेखी यही परसार रली अरे
1: ते तन ते तन
2: चला जगह पहले देख हम जगह
1: तू जगह भी तू जगह त
3: अरे ध्यान छोड़ पंडित अरे ईमान छोड़ मुल्ला
1: बाबा को जोगी बाबा हो
3: अरे बाबा
1: ए हे बाबा हो
3: ए बाबा
1: चलो ना हो लंगड़ा पेड़े तोर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन। और रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार में एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
1: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपए। फोर लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग टू लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा फोर लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में उन्नयन की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
2: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के लिए 164 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। वहीं भोजपुर जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 31 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE4 के लिए जुलाई महीने में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री तिवारी ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए अब प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में ही विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
3: हमने 5 साल में हमने कैलेंडर बनाया है कि हम 1 लाख शिक्षकों की और भर्ती करेंगे। अब कैलेंडर बनाया है तो इसमें हर साल किसी साल 12,000 किसी साल 15,000 शिक्षक हमारे रिटायर भी होने वाले हैं। TRE4 की वैकेंसी जुलाई महीने में हम अधियाचना BPSC को भेज देंगे और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि हर साल न्यूनतम 20,000 की बहाली करेंगे और 5 साल में 1 लाख करेंगे।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की स्थलीय जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में तय मानकों के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था नहीं पाई जाएगी उसे बंद किया जाएगा।
3: और मदरसा विद्यालय हो या संस्कृत विद्यालय, सभी विषयों की पढ़ाई होगी। दोनों को साथ साथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर हम कर रहे हैं, हम दोनों को करा रहे हैं। जबकि संस्कृत विद्यालयों को तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसे दिए ही नहीं आज तक, और मदरसे को हमेशा पैसा मिलता है, चाहे वो वेतन का पैसा हो या इंफ्रा का पैसा हो, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलता है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को पुरस्कृत किया गया। इस श्रेणी में पंचायत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुखिया अनीता टोप्पो ने पुरस्कार ग्रहण किया।
4: सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में द्वितीय पुरस्कार जाता है तेलकप बिहार को।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों के सशक्तिकरण पर काम कर रही है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है और एक लक्ष्य निर्धारित, 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल, और हम उस लक्ष्य को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते, और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा है।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि मेला क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी हो सकती है।
1: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है।
0: मुंगेर के ITC पार्क स्थित 700 साल पुराने विशाल वटवृक्ष को हेरिटेज ट्री घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष के रूप में खड़ा यह वटवृक्ष बिहार के महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है। एक रिपोर्ट।
2: मुंगेर के ITC पार्क में 700 वर्ष पुराना वटवृक्ष को प्राकृतिक धरोहर के रूप में पहचान देने की कवायद शुरू हो गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी अमरीश कुमार मल ने बताया कि लखनऊ के बीरबल सहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इस वटवृक्ष की उम्र 700 वर्ष निर्धारित की है।
3: काफी पुराना ये प्रतीत होता है, इसलिए हमने लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट को हमने इसके उम्र पता करने के लिए हमने एक लेटर दिया था और हालिया में ही उनका रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि ये करीब 700 से भी ज्यादा वर्ष पुराना पेड़ है।
2: मुंगेर बानकी महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका कृतिका सुमन ने कहा कि इस पेड़ का संरक्षण चुनौतीपूर्ण है।
4: ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। इसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसका जो पहला चैलेंज है वो ये है, क्योंकि इसके जो एरियल रूट्स है और इसके जो तने हैं वो काफी दूर तक फैले हुए, उनको सपोर्ट देना है। इसके चलते हम आर्टिफिशियल कोई बैम्बू का खंभा वगैरह लगा सकते हैं उसको एरियल रूट्स को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज है कि इंसेक्ट्स का अटैक होता होगा, दीमक का अटैक उसमें हो रहा होगा, तो हमको उस अटैक से भी उसको बचाना है। तीसरा, जितना ज्यादा हो सके हमको ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोक, उसके आसपास हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, मिट्टी खुली रहे ताकि उसके जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलता रहे, पानी प्रॉपर मिलता रहे, जिससे वो नॉर्मल तरीके से जीवित रह सके। कि ऑब्वियसली इतना पुराना पेड़ है तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी वगैरह रहते होंगे, तो हमको उसको एज ए इको सिस्टम कंजर्व करना।
2: मुंगेर का यह वटवृक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जब तक हम अपनी प्रकृति को सहेज कर रखेंगे हमारा इतिहास भी अमर रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
0: ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने भीषण गर्मी को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटारे के भी निर्देश दिए। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर वाहन परिचालन का सफल ट्रायल किया गया। परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले 4 पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के किरवार गांव में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में सगे और चचेरे भाई बहन शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिट्टी खनन के लिए JCB से खोदे गए गड्ढे में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार को पटना में 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के मैस्कौर प्रखंड के ग्रामीण आवास सहायक वीरू कुमार चौधरी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय में आयोजित रोजगार मेले में 70 से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने ऑफर लेटर प्रदान किया। इधर दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खगड़िया और मोतिहारी में भी कल 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग करने के आरोप में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के पैन पंचायत में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत सहरसा जिले के कहरा गांव से अभय कांत ठाकुर ने लगभग 500 साल पुरानी पांडुलिपि जिला प्रशासन को सौंपी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन।

0: बातिया नहीं का कुछ बोलत है दादा है बाबा
1: दीदी
2: दीदी
0: का
2: ए तर ना बोली है
0: हां
2: कहि तू तो थोड़े जाके गोइठी ले आईती
0: का होई ये दादा
2: आइन के मुहवा तो धो के आ थोड़े मोर्चा के धुकनी देती नु
1: अलख निरंजन
2: अलख निरंजन रे
0: सुना हम बताओ तारी अभी निक जगह दहले ढंग से
2: धोके ढंग से झक झोर नु
0: जगह जा
2: झक झोर सजी अवसर झक झोर से करा के ई जोगिया के
0: अरे

0: आप देखिए वहाँ जोगी बिरजा भार का कह रहा बलान।
1: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई। 98-527-88-291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84-28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत। हंसत रही, मुस्कुरात रही, नमस्कार।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434668 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। तू जो
10: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: चाहते हो मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
13: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 62052612 पे।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
15: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
14: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
16: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
14: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
14: और 9097160602।
17: उत्तर बिहार का गौरव,
18: सारण प्रमंडल की शान,
17: गोपालगंज की धड़कन
18: और अपने भाषा की पहचान,
17: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
18: सुनो दिल से।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ ST ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब ST ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करे 85070-32042 पे।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
13: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में लेडी इरविन कॉलेज इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉलेज की वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक लेडी इरविन कॉलेज, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। ये जानकारी 30 मई 2026 से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लेडी इरविन कॉलेज में ही एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद डेपुटेशन आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, CGO कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। संयुक्त निदेशक कैपिटल मार्केट 2 पद, उपनिदेशक बैंकिंग 2 पद, उपनिदेशक कॉरपोरेट लॉ 2 पद, उपनिदेशक फॉरेंसिक ऑडिट 1 पद, उपनिदेशक अन्वेषण 3 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक बैंकिंग 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कैपिटल मार्केट 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कॉरपोरेट कानून 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक अन्वेषण 2 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कराधान 1 पद, वरिष्ठ अभियोजक 3 पद, सहायक निदेशक अन्वेषण 12 पद। ये सभी 38 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार समाचार दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्ति परिपत्र के लिए विचार किया जाएगा। अतः जो उम्मीदवार पहले के रिक्ति परिपत्र के विरुद्ध आवेदन कर चुके हैं, उन्हें उसी पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.sfio.nic.in। इसके अतिरिक्त आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.mca.gov.in। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 के लिखित परिणाम की घोषणा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 1 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.upsc.gov। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
15: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
14: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
16: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
14: संपर्क 99-393-65-930।
17: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
18: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
17: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
18: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
17: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
19: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
20: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
19: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
20: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्रामिक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
19: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
20: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
21: प्रसाद क्लिनिक,
22: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
21: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
23: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
0: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
0: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
23: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
24: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
25: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे।

0: निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, धान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

0: अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रूपये भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं। सबको काबिलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हू लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
7: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
14: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
13: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
14: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
13: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
13: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
14: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
14: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
19: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
20: क्यों, क्या हुआ है?
19: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
20: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
19: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
20: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
21: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अवैध अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। नीट की परीक्षा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी, जिला पदाधिकारी ने की बैठक। 4 गुमशुदा किशोरियों को दिल्ली और लखनऊ से पुलिस ने किया बरामद। वन स्टॉप सेंटर पर जिला पदाधिकारी ने की कड़ी कार्रवाई। और पशु तस्करों को पुलिस ने दबोचा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और जांच केंद्रों तथा कथित फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने प्रखंड मुख्यालय स्थित करीब आधा दर्जन निजी अस्पतालों एवं क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण की सूचना पहले ही फैल जाने के कारण अधिकांश निजी अस्पताल संचालक अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर मौके से गायब हो गए थे। वहीं जो अस्पताल और क्लिनिक खुले मिले, वहां अधिकारियों ने पहुंचकर पंजीकरण, संचालन संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों की संचालन व्यवस्था और अभिलेखों की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। इधर जांच के बाद स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि कहीं कोई संचालक जांच में सहयोग नहीं करता है अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है तो जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कुचायकोट क्षेत्र में अवैध अस्पतालों, जांच केंद्रों और बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा इलाज के नाम पर लोगों से धन वसूली करने की शिकायत मिल रही थी। आरोप है कि कुछ लोग अपने प्रतिष्ठानों पर बड़ी बड़ी चिकित्सकीय डिग्रियां भी प्रदर्शित कर मरीजों को भ्रमित कर रहे थे, जबकि उनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के बाजारों में और अस्पताल संचालकों तथा कथित फर्जी चिकित्सकों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आगामी नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बैठक की। उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक के दौरान संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों को सुगम एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण की मांग की थी। इस पर श्रम बल प्रदाता एजेंसी प्रनेजा एनवायरो केयर एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जारी कार्यादेश रद्द कर दिया गया है और महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर की परियोजना प्रबंधक नाजिया मुमताज तथा जिला मिशन समन्वयक सुबोध कांत सिंह की संविदा भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। जा रहा है कि जिला पदाधिकारी ने जांच किया था जिसमें पलना घर के संचालन पर सरकारी राशि तो खर्च की जा रही थी पर वहां एक भी बच्चा पंजीकृत नहीं था। इसके बावजूद केयर वर्कर और सहायक केयर वर्कर की नियुक्ति, मानदेय भुगतान और संचालन संबंधित प्रक्रियाएं कागजों पर चल रही थी। जांच में मिली गड़बड़ी के बाद अब इनके लाइसेंस को रद्द किया गया और वहीं इसमें तैनात 2 पदाधिकारियों के संविदा को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला पदाधिकारी ने इसमें और भी गहराई से जांच कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। नगर थाना क्षेत्र से चार किशोरियों के गायब होने की सूचना नगर थाना की पुलिस को मिली थी। पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए मानवीय और तकनीकी टीम का गठन किया गया, जिसमें आसूचना संकलन और अन्य तकनीकी सूत्रों से जानकारी करते हुए पुलिस ने तीन किशोरियों को दिल्ली से सकुशल बरामद किया और एक किशोरी को लखनऊ से बरामद किया गया। चारों किशोरियों को सकुशल आज गोपालगंज लाकर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से इनके बयान दर्ज कराने के बाद इनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इस दौरान गोपालगंज पुलिस ने जनता से अपील किया है कि बच्चों एवं किशोर किशोरियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखें तथा किसी भी संदिग्ध परिस्थिति की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 90-300-27-299 पर दें। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील किया है कि लोग अपने बच्चों पर विशेष नजर बनाए रखें, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे कई तरीके के गलत स्टेप उठा लेते हैं, जिनसे परिजन और प्रशासन सबको परेशानी होती है। इसलिए अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी बनाए रखें, बच्चों को आवश्यक सुझाव देते रहें और बच्चों से बातचीत करते रहें, ताकि बच्चों की सभी गतिविधियों की जानकारी समय पर आपको मिलती रहे। इधर बैकुंठपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ी मोड़ के पास एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 10 मवेशियों को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस घटना में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि वह अपना नाम सद्दाम हुसैन बताया है, जो सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के बेलौर गांव के मियां तलब मियां का पुत्र है। पुलिस ने इसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है और 10 मवेशी तथा उसकी पिकअप गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर इसको पकड़ा और गाड़ी तथा मवेशियों को जब्त कर अब आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी पिछले साल से ही फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम पिंटू शाह, पिता विसर्जन शाह, जो माझा के भोजपुरवा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसको गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और निष्पादन के लिए आवश्यक पदाधिकारियों को निर्देशित किए। प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी 403 पैकेट बंटी बबली शराब के साथ एक ई रिक्शा को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सीसवा टोला में की, जिसके बाद चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। शराब और ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उत्पाद पुलिस ने बिशंभरपुर के विनोद मटिहिनिया में भी कार्रवाई की। यहां 15 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी संजय कुमार परशुराम प्रसाद बताया जा रहा है। यह अहिरौली दान थाना तरया सुजान कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले परशुराम प्रसाद का पुत्र है। गिरफ्तार आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटिया पुलिस ने कल्याणपुर गांव में हुई मारपीट से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर ली है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है और खूनी संघर्ष हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराई। इस संबंध में दोनों पक्षों ने कटिया थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब इस मामले में पुलिस ने दोनों आवेदन पर केस दर्ज किया है। साथ ही एक पक्ष से नामजद आरोपी राम अवध भगत पिता जमुना भगत और शास्त्री भगत पिता राम अवध भगत को गिरफ्तार किया है और दूसरे पक्ष से नामजद अभियुक्त लक्ष्मी शाह पिता स्वर्गीय विश्वकर्मा शाह तथा एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने पकड़ा है। अब इन चारों पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 लीटर देशी शराब भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी सुनील सिंह पिता स्वर्गीय कृष्णा सिंह साकिन सरया वार्ड नंबर 13 राजवाही कॉलोनी थाना नगर को गिरफ्तार किया गया है और उसके घर से विधिवत पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद एक दूसरे मामले में आरोपी राजन कुमार पिता लुहेली बीन साकिन सासामुसा बिन टोली थाना कुचायकोट को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से 18 लीटर देशी शराब मिली है। इन दोनों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कुचायकोट पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे 4 प्राथमिकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी अशोक प्रसाद, दूसरा शैलेंद्र प्रसाद, ये दोनों विष्णु प्रसाद के पुत्र हैं, और रितिक कुमार ये अशोक प्रसाद का पुत्र है, और एक महिला भी इनके साथ पकड़ी गई है। ये सभी आरोपी मतिया टोला गुमान राय के निवासी हैं। कुचायकोट पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा बिहार के गया जी जिले के टनकुप्पा प्रखंड अंतर्गत गजाधरपुर एवं बरसौना गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के बीच टिकाऊ कृषि पद्धतियों, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर मणि भूषण एवं वैज्ञानिक डॉक्टर घोष अली द्वारा तथा कृषि विज्ञान केंद्र गया के डॉक्टर अशोक कुमार ने किसानों को संतुलित एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग, एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व और वैज्ञानिक तरीके से मृदा नमूना संग्रहण, हरी खाद के उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अवैध अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। नीट की परीक्षा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी, जिला पदाधिकारी ने की बैठक। 4 गुमशुदा किशोरियों को दिल्ली और लखनऊ से पुलिस ने किया बरामद। वन स्टॉप सेंटर पर जिला पदाधिकारी ने की कड़ी कार्रवाई। और पशु तस्करों को पुलिस ने दबोचा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
25: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
26: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
27: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
28: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
29: सुनिए सुनिए सुनिए,
30: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
29: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
30: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
29: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
31: प्रसाद क्लिनिक,
32: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
31: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
32: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
33: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमजीम 90.4 FM पे। समय 9:20 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम से आप जुड़ पाएंगे और जैसे आपकी मैसेज हमारे पास पहुंचेगी वैसे आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो ध्यान रखना है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। फिलहाल पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, शमीर आलम जगलिया से सॉन्ग सुनना है दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे। डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, दिलीप जी, सूफिया, वशीम, शगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक, साजा, हिना, हजरा, अनामिका गुड़िया, सविता, ब्यूटी, शबनम, जरीन, शबनम सिद्दीकी, नीतू, रोशनी और आगे शबीना, शब्बा, आशा, निशा, तब्बू, सजदा और संतरा और आपको भी। तो इसलिए हम भी सुनेंगे और आप लोग से निवेदन है कि आप फ़ोन न करें, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉल की ज़रूरत नहीं है। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज करें, बिल्कुल हम आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके गाने के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। समीर आलम, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कुछ लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सुनो भैया, आज मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को करने वाले अभी मैसेज हमारे पास ठीक से रिसीव नहीं हो पा रही है, तो चलिए फिलहाल आप लोग बने रहे हमारे साथ। समीर आलम जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे।

सभी प्यारे श्रम रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि 90s के गाने या पुराने ओल्डीज गोल्ड गाने की फरमाइश करने हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी जी, आशा भोसले और इन सभी सिंगर जी के गाने आप फरमाइश करें। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्कार सर, मैं राजेश प्रजापति बबरखा जौनपुर से, और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए और गाने की फरमाइश करते हैं, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे भी मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, सॉन्ग है किया किया आजा किया, ये सनम वेलकम मूवी से डेडिकेट करती हूँ। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। मैसेज हमारे पास पहुँच चुकी है और मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर जी, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहाली पंजाब से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, दिलीप जी बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो कैसे हैं सर, तो बिल्कुल बढ़िया है और आप सभी के बीच उपस्थित हैं, और इस मैसेज को करती हैं निर्मला जादवपुर से, आप बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप ही के मैसेज आप दो बार रिपीट कर रहे हैं मैसेज, तो बिल्कुल आपके मैसेज पहुंची है दिलीप जी, और आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। थोड़ा सा सब्र करें और आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं राजेश जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
1: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म हमारे पर। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे और सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मैसेज करते हैं, सर मैं जो आपसे मिला था स्कूल से आते वक्त, मेरा नाम है दीपक दीपराज कुमार और भी बिरवा से हूँ और मुझे गाना सुनना है, तो सुना दीजिए। गाने की फरमाइश करते हैं तेरी मेरी प्रेम कहानी में, सुनाना चाहता हूँ जितने भी सुन रहे हैं उन सभी को। तो चलिए दीपराज आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। कुछ मैसेज भी पहुँचे हुए तो मैसेज देख ले, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे दिन बीते अच्छा सॉन्ग है, मैसेज करते हैं समीर आलम। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सुनो सर जी, हम गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गुड इवनिंग सुनो भैया, मैं अनिल छोटपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुपर सॉन्ग वेरी नाइस ओल्ड इज गोल्ड, ये सॉन्ग मेरी माँ को भी बहुत पसंद है। मैसेज करती हैं निशा भारती और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप और सभी दोस्तों को, मैं शाजिया नवादा से और सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स, तो अभी गाने प्ले हुए नहीं, प्ले होंगे। चलिए अग्रिम धन्यवाद के लिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमछम सुनने के लिए। आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमछम 90.4 FM पे।

रेडियो MCM 94.4 FM सुन रहे आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें फरमाइश का। और अभी हम सभी दीपराज जी की फरमाइश सुन रहे थे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और मैसेज करती है निशा भारती उजोलिया अंशका गांव प्रखंड से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। और

0: पीर मेडिकल हॉल अंबेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
0: बीके टाइल्स यहां मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट बेसिन कॉमोड बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406 मीरगंज ब्रांच में 9693101611
0: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602 भोरे ब्रांच में 8207856404
1: सिवान ब्रांच में 9942071405 मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: सुनिए सुनिए सुनिए
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा फैंसी साड़ी लेडी सूट क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन केडिया लेन मेन रोड गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी।
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा। संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
9: आप सुन रहे हैं

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
0: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: VCD and cassettes only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।